ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तिथि 21, तदनुसार 12 सितंबर सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।

0: भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब समय हो गया है कार्यक्रम वंदन वार का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

चिंतन। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन, और अब भक्ति संगीत।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। झरोखा के अंतर्गत आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप किस समय पर सुन सकते हैं।

6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में पुराने गीतों का आनंद आप उठाएंगे ठीक 7 बजे। 7:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात प्रस्तुत किए जाएंगे 8 बजे। 8:15 ये समय रहेगा कार्यक्रम त्रिवेणी का। पर आप सुन सकते हैं चित्रलोक कार्यक्रम। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से करवाएंगे आपको अपडेट आज का अखबार कार्यक्रम में 9:30 पर। 10 बजे हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं। सफर सुरीला सा कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगी 10:05 पर। और हंसी के ठहाके लगाने के लिए रहिए तैयार 10:30 पर कार्यक्रम पॉप टाइम में।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम, जो कि आपकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम है, प्रस्तुत किया जाएगा 11 बजे। हिंदी में समाचार 12 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। प्रादेशिक हिंदी समाचार 1:05 पर प्रस्तुत होंगे और 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुन सकते हैं। एक बजकर 15 पर आप आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 1:30 पर। 2 बजे त्रिवेणी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 2:15 पर प्रस्तुत होंगे सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 2:30 पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम समय रहेगा 3 बजे। नाट्य तरंग 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा ये कार्यक्रम। और 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सायं 5 बजे प्रस्तुत किए जाएंगे। 5:05 पर फिल्म संगीत का आनंद उठा सकते हैं आप। और 5:20 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम

6:10 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार, 6:20 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार प्रस्तुत होंगे। पंजाबी गीतों का आनंद आप उठाएंगे 6:30 पर। 6:45 ये समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया का। 7 जयमाला कार्यक्रम, जिसमें विशेष जयमाला आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। पंजाबी गीत आप सुन सकते हैं 7:47 पर। 8 ये समय रहेगा कार्यक्रम हवा महल का। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 90s से 2021 के हिट फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं। समाचार संध्या 8:45 पर आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। 10 छाया गीत कार्यक्रम और 10:32 पर सुर सांझ कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हैं आज पेश किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: सेवा देश की सुरीली धड़कन, आज सुनिए रामचरित मानस का भाग 309 लंका कांड।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूत बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो, ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्म पालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आज 12वीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। मित्रों, इन दिनों जारी है श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, और किराना घराने की गायकी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, पिछली कड़ी में हम विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी की जो आवाज में मिठास है और जो कोमलता है उनके स्वरों में, उसकी बात हो रही थी। उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
2: आज मुझे लगता है किराना घराने की आवाज की जो मिठास रहती है, सुरों की कोमलता, ये दोनों चीजें हमारे घराने की एक पहचान है। किराना घराने में लय से अधिक
1: जी,
2: शुरू में मैंने बोला है, लय से अधिक स्वर की शुद्धता और सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: जी जी।
2: मधुर और कोमल स्वर का लगाव जो है हमारा, प्रत्येक स्वर को अत्यंत कोमल, मधुर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है
1: जी,
2: जिससे गायन अत्यंत श्रवणीय बनता है। स्वर्ग का दीर्घ विस्तार, एक एक स्वर पर हम ऐसा ठहराव है, एक एक स्वर को हम ठहराव के साथ गाकर उसकी पूरी अनुगुंज और गहराई को उभारते रहते हैं। सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग, स्वरों के बीच की सूक्ष्म श्रुतियां अत्यंत बारीकी से उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा।
2: और जिससे गायकी में हमारे निखार आता है, हमारे यानी किराना घराने की गायकी को। क्रेडिट मैं मेरे लिए नहीं लेती, घराना के लिए। मींड और आंदोलन का जो सुंदर प्रयोग हम करते हैं स्वरों के,

0: एक दूसरे से सहजता और निरंतरता के साथ जुड़ने के लिए मिंड और आंदोलन का प्रभावी उपयोग किया जाता है। भावपूर्ण अभिव्यक्ति केवल स्वर की शुद्धता ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से राग का भाव भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है।
1: अच्छा,
0: अन्य घरानों से भिन्न क्या है ऐसा अगर आप पूछे, अन्य घरानों की तुलना में किराना घराने की विशिष्टता उसकी आवाज की स्वाभाविक मिठास, सुरों की कोमलता तथा प्रत्येक स्वर को अत्यंत भावपूर्ण, धैर्यपूर्ण और मधुर ढंग से प्रस्तुत करने की शैली में निहित है। यही स्वर माधुर्य इस घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान प्रदान करता है।
1: जी।
0: मिठास जो आती है वो गा के स्वर को हम जैसा बनाते हैं, तालीम लेते हैं, वहां शुरू होता है। अगर आपकी आवाज ओरिजिनल गिफ्टेड मिठास है उनकी आवाज में, तो और भी हीराबाई जैसा आवाज और मिठास और माधुर्य बन जाता है। आज अगर आपकी इजाजत हो तो किराना घराने के गायकों ने कुछ नाट्य गीत भी गाए हैं।
1: मैं वही कहने वाला था कि बहुत से किराना घराने के मूर्धन्य गायक कलाकार महाराष्ट्र में और कर्नाटक में हुए हैं। और महाराष्ट्र में जो एक संगीत नाटक की परंपरा रही है, तो वो जो स्वर्णिम युग था संगीत नाटकों का,
0: ब्यूटीफुल,
1: उन दिनों में बहुत से किराना घराने के गायकों ने संगीत नाटकों में,
0: हीराबाई बड़ोदेकर, सवाई गंधर्व, माणिक वर्मा,
1: इन सब के ये स्वरों में जो है नाट्य गीत हम सुनते हैं।
0: बहुत ही अच्छा नाट्य गीत,
1: कुछ नाट्य गीतों के हम झलक सुने ऐसा मैं चाह रहा था।
0: हीराबाई बड़ोदेकर प्रत्यक्ष स्टेज पर बहुत ही अच्छा नाट्य संगीत गाती थी, लेकिन बहुत सारे नाट्य गीत उनके रिकॉर्डेड
1: नहीं है।
0: लेकिन हमारी गुरुजी बोलती थी बहुत मीठा गाती थी वो।
1: जी, जी।
0: उनका एक नाट्य गीत हम सुनेंगे।

0: विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी के आवाज़ में नाटिकीत की झलक हम सुन रहे थे। इसके साथ साथ शकुंतला जी, क्यों ना माणिक वर्मा के में बहुत से नाटिकीत है,
1: मेरी मन
0: उसमें से किसी एक नाटिकीत को एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ अगर सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: मान अपमान नाटक
0: जी
1: का जो खरा तो प्रेमा
0: जी जी,
1: थोड़ा सा मिश्र मांड वगैरह है उसमें,
0: हाँ।
1: वो बहुत ही अच्छा गाई है वो,
0: तो सुनते हैं इस नाट्य गीत की एक झलक।
1: हाँ।

0: मान अपमान नाटक के इस नाट्य गीत की झलक अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, और इसे सुनते हुए जो गीत के सुर जो है मन में, वो हृदयनाथ मंगेशकर जी का कंपोजिशन है लेकिन फिल्म से।
1: कौन सा भी गीत होने दो, उसको एक उसकी लोक संगीत की बैठक होती है। वैसा नाट्य गीत भी हम वे अलग अलग शास्त्रीय संगीत से, लोक संगीत से लिया है। ये भी जो केसरिया बालम ये जो गाना है वो राजस्थानी लोकगीत है ओरिजिनली।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसको लेकिन
0: और ये मांड भी जो है वहाँ राजस्थानी लोक संगीत से
1: आया है,
0: आया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं लेकिन फिल्म से ये रचना।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: परिवार

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट
1: की बात करेंगे। संगीत की दुनिया में कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर दिल को उतनी ही खूबसूरती से छू जाती हैं। ऐसी ही यादगार धुनों के रचनाकार थे जयकिशन। शंकर जयकिशन की जोड़ी तो कमाल की थी ही, उनके बारे में सभी ने सुना भी है और आज उनकी यानी कि जयकिशन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए सुनते हैं उनके संगीत से सजे कुछ सदाबहार गीत। सदाबहार नहीं, हम कहेंगे कुछ भूले बिसरे गीत जो कम सुनने में आते हैं मगर दिल को छू जाते हैं। तो आइए आगाज करते हैं बरसात फिल्म के उस गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में ये गीत फिल्म आवारा से। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन की धुन।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आपको बता दें, शंकर जयकिशन ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सदाबहार धुनें दी। उनकी संगीत शैली में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकप्रिय संगीत का भी खूबसूरत मेल था। आइए अब आपको सुनवाते हैं अजीबस शुक्रिया, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

ये था रोशन का संगीतबद्ध किया गीत। आगे और भी ऐसे गीत आपको सुनवाएंगे जिसकी धुनें बनाई हैं शंकर जयकिशन ने। इस समय भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: Baby।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए हम आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये अगला गीत। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, तलत महमूद ने स्वर दिया है, फिल्म का नाम दाग।

आह फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र ने लिखा था, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई थी। और अब आइए आपको सुनवाते हैं राजहट, इस फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

0: आज के भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शंकर जयकिशन इस जोड़ी के संगीतबद्ध किए हुए कुछ नगमे। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कीजिए कुछ पलों का इंतजार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आगाज करते हैं कार्यक्रम का किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम कल आज और कल। शैली और शैलेंद्र ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन की धुन।
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या

लता मंगेशकर और मुकेश का गाया गीत अब सुनिए संगम। इस फिल्म से शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं आंख मिचोली इस फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में ये गीत उजाला फिल्म से। शैलेंद्र की रचना है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत। इस गीत को शब्दबद्ध किया है शैलेंद्र ने और सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

हमराही फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। आज के कार्यक्रम में आपने सुने शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए हुए कुछ नगमे। इसी के साथ हम हैं राही प्यार के इस

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात के लिए आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का देश ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को

0: सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे।

0: श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
3: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach.

0: and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मुक्की में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी, पुतिन, फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में

0: वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। त्रिवेणी

त्रिवेणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुत तेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है, तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ ला दी है। अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना या एकांत में होना। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने भी पड़ते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा और रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिंदगी के सफर में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफर में कोई साथ दे दे तो अच्छा, और ना दे तब भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ही प्रस्तुत होना पड़ता है।

अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है, बेचैनी होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझा बुझाकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वे भले ही संसार के सम्मुख हों, लोगों से घिरी हों, लोग उनका उपभोग करते हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति एकांत के माहौल में ही होती है। एकांत में ही उनका प्रकटीकरण होता है, एकांत में ही वे अपना साकार रूप लेती हैं। इसलिए चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणास्पद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हो या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इसे हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें।

आज से 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हजारों लाखों फ्रेंड्स के बीच भी कोई अकेला हो सकता है, पर सोशल मीडिया के साथ हम इसे बखूबी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर होना और बात है, जबकि वास्तविक जीवन में कोई सचमुच अपना होना दूसरी बात। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट की धूम के चलते दुनिया भर में पल भर में संबंध बनाना आसान लग सकता है। हम अपने दोस्तों को संदेश, ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पर इन सब में कोई ऐसा अपना ढूंढना जो आपको आपकी अकेलेपन से निकाल सके, काफी मुश्किल होता है। इतनी सारी सोशल साइट्स के बावजूद अकेलापन अभी भी एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति अपने साथी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स नहीं, अपने सचमुच के दोस्तों और अपनों से अपने विचार मिलकर बांटें, हंसें और हंसाएं। परिजनों, माता पिता, पार्टनर, बच्चों, भाई बहन और दोस्तों से हमेशा जुड़े रहें, उनके काम आते रहें, उनकी समस्या का समाधान जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आप मदद लेते हैं तो दूसरों के मददगार भी बने। ये बेहद जरूरी है आज के इस समय में, जब हजारों की भीड़ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अकेलापन, तन्हाइयां महसूस करते हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सकें।

0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करेंगे योद्धा फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है बी प्राक ने। मनोज मुंतशिर की रचना है, तनिष्क बागची ने इसकी धुन बनाई है।

शान, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाज़ों में सुनिए जय हो फिल्म का ये गीत। समीर और अनजान ने इसे लिखा है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारियां। इस फिल्म का गीत मोहम्मद इरफान, गजेंद्र वर्मा की आवाजों में, गीत संगीत मिथुन का।
1: यार!

0: साथियों, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस आज है। ये हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग, ज्ञान, तकनीक और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने का प्रयास करते हैं। ये दिवस वैश्विक एकजुटता और साझी प्रगति का संदेश देता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज।

0: यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
3: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
4: अरोड़ा प्लाईवुड
5: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
6: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
7: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
6: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
7: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
8: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के प्रति जागरूक करना और आपात स्थिति में सही समय पर मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दुर्घटना, चोट, जलने या अचानक तबीयत बिगड़ने पर दी गई तत्काल और उचित प्राथमिक चिकित्सा कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रोताओं आप भी इस बात को लेकर जागरूक नहीं हैं, तो आप भी सीखें और अपने आसपास रहने वालों को भी बताएं, इस बात की जानकारी दें कि प्राथमिक उपचार किस तरह किए जाते हैं जो किसी भी आपातकालीन या इमरजेंसी की स्थिति में काम आते हैं और ये किसी की जान बचा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। तमंचे इस फिल्म से मोहित चौहान की आवाज़ है, गीत और संगीत कृष्णा का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: और अब सुनवाते हैं हम टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा है शरीफ तोशी का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए अब आपको सुनवाते हैं हंसी तो फंसी। इस फिल्म का गीत चिन्मय श्रीपाद, शेखर राव जियानी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और विशाल शेखर का संगीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह का गाया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। सोहेल सेन की ने इसके गीत को सुरों में ढाला है और फिल्म का नाम गुंडे।

बैंग बैंग इस फिल्म का गीत अब सुनिए विशाल ददलानी की आवाज में। और गीत और संगीत, गीत है विशाल ददलानी का, संगीत विशाल शेखर का।

0: बैंग बैंग इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं

0: आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
4: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
4: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करने लई मजबूर करने वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: लीजिए पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार।
0: श्रोताओ, आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। कहते हैं घर में दादा दादी हों तो घर सिर्फ घर नहीं रहता, वो कहानियों, संस्कारों और प्यार का पूरा संग्रहालय बन जाता है। और सबसे मजेदार बात ये कि आज के बच्चों के पास मोबाइल में गूगल है जिससे वो सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन दादा दादी के पास उससे भी बड़ा ज्ञान का भंडार है और वो है उनकी कही गई टैगलाइन। भाई हमारे जमाने में बस ये 3 शब्द सुनते ही समझ जाइए कि अब कम से कम 20 मिनट की कहानी शुरू हो गई है।

हा हा हा हा, क्या बात है। दादा दादी वो लोग हैं जिनके पास पोते पोतियों के हर सवाल का जवाब होता है। बच्चा अगर पूछे, दादाजी चांद में दाग क्यों है, वो इतनी दूर होकर भी हमारे साथ साथ क्यों चलता है, हम बच्चे चंदा को मामा क्यों कहते हैं, तो हर जनरेशन के दादा दादी की एक अपनी मजेदार कहानी शुरू हो जाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ वो बड़े आराम से कहते हैं, बेटा हमारे जमाने में कहते थे। लेकिन हम तो ये कर रहे हैं हंसी मजाक की बात, सच बात तो ये है कि दादा दादी सिर्फ परिवार के बड़े सदस्य नहीं होते, वो परिवार की जड़ें हैं। उनकी गोद में बैठकर सुनी गई या सुनाई गई कहानियाँ, उनके हाथों का खाना और उनकी छोटी छोटी डांट जीवन भर की पूंजी बन जाती है।

ये गीत सुनते ही कितने ही बचपन के दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। दादी की रसोई, दादा दादी का चश्मा, गर्मियों की छुट्टियां और रात को छत पर लेटकर तारों को गिनना। आज हम मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया देख लेते हैं, लेकिन दादा दादी की आंखों में अपना पूरा संसार दिखाई देता है। और दादाजी की एक खासियत तो कमाल की होती है, पोता पोती कुछ भी मांग लें, दादाजी की जेब से पैसे निकल ही आते हैं। और पूछो तो कहते हैं, अरे हमारे पास कहाँ है, लेकिन 5 मिनट बाद ही वही जेब फिर से भर जाती है।

0: न करना या।
1: सुना आपने ध्यान से, आज है ग्रैंड पेरेंट्स डे और इस दिन एक छोटा सा काम आप जरूर कीजिए। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी पुरानी यादें सुनिए, और अगर दूर हैं तो सिर्फ फोन पर क्या कर रहे हैं ये मत पूछिए, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि बुजुर्गों को महंगे तोहफों से ज्यादा हमारे समय और अपने पन की चाह

जी हाँ, माता पिता हमें जीवन देते हैं और दादा दादी उस जीवन को अनुभव, संस्कार और यादों से खूबसूरत बनाते हैं। अंत में हम यही कहेंगे आपसे कि आप घर के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे पुराने ज़माने के नहीं हैं, बल्कि घर के सबसे खूबसूरत ज़माने के हैं।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत।

0: है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: आज का अखबार कार्यक्रम में अब बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से शुरू। ब्रिक्स का संदेश, डॉलर के आगे जीत। दिल्ली से दुनिया को पुतिन की दो टूक, हमने डॉलर छोड़ा, रुपया रूबल में पेमेंट करेंगे, पश्चिम पर निर्भरता होगी खत्म। पीएम मोदी बोले, भारत में स्टार्टअप क्रांति, ब्रिक्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचना। पीएम मोदी ने पुतिन को तमिल विद्वान और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की पुस्तक तिरुकुरल की भेंट। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटा, भूस्खलन से आवाजाही ठप, 2000 तीर्थयात्री रोके गए। भारत आठवीं बार फाइनल में, जूनियर एशिया कप हॉकी में अनमोल के डबल से मलेशिया को दी मात, अब कोरिया से होगा मुकाबला। विदेशी शेयर और प्रॉपर्टी में निवेश सिर्फ 2 साल में 37% बढ़ा, पढ़ाई में 40% घटा। वैश्विक स्तर पर दालें महंगी, घरेलू बाजार पर बढ़ेगा दबाव। हूतियों ने लाल सागर पर किया कब्जा, वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहराया संकट। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: श्रोताओ, अब बात करते हैं जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की। देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। तो अब आपको बता देते हैं कि आप पंजीकरण इसमें कैसे कर सकते हैं। MyWaves पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर या फिर लॉगिन करें। मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और फिर सबमिट कर दें। और खास बात, चंडीगढ़ भी इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल है। ध्यान दीजिए, प्रविष्टियां अब 30 सितंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। तो देर मत कीजिए, अपने शहर, गांव, जिले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा। क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
2: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
1: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: आज का अखबार कार्यक्रम में अब रुख करते हैं क्षेत्रीय खबरों की ओर।

हाईकोर्ट के निर्देश पर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती का परिणाम डेढ़ साल में बदला। चौथी बार नौकरी कर रहे 18 एएमओ बाहर। पंजाब में नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में स्वच्छता व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव। सीधी भर्ती बंद, सैनिटरी इंस्पेक्टर ही बनेंगे सुपरिटेंडेंट, 100% पद प्रमोशन से भरेंगे। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक की छात्रवृत्ति शाखा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप योजनाओं का शेड्यूल किया जारी। 5 छात्रवृत्तियां एक ही पोर्टल पर। ऑफलाइन फॉर्म हुए बंद, 14 सितंबर से स्टेट स्कॉलरशिप की ऑनलाइन आवेदन शुरू। हरियाणा देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल। एचआईवी नियंत्रण लक्ष्य के करीब पहुंचा ये राज्य। 5 जिलों ने हासिल किया सुरक्षित का पूर्ण लक्ष्य दर्जा। 15 सितंबर से सभी जिलों में लोक मीडिया अभियान होगा शुरू। हरियाणा में एचएसजीएमसी को देना होगा आवेदन। कमेटी तय करेगी पाक की धार्मिक यात्रा। रोजगार देने में कई राज्यों से आगे लुधियाना। 5.6 लाख लोगों को दे रहे रोजगार। सूबे में दूसरे नंबर पर जालंधर। तरन तारन में महिलाओं के स्वामित्व वाले सबसे अधिक प्रतिष्ठान। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 2 टनल शुरू। मंडी से कुल्लू का सफर अब 1 घंटे में। आज का अखबार कार्यक्रम में बात कर लेते हैं स्थानीय खबरों की। GM SSS 23 में दुनिया का पहला मदर चाइल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट। कोर्ट पर उतरी सभी 24 माँ बच्चों की जोड़ियां बनी चैंपियन।

दिसंबर में 35 वार्डो में होंगे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव, 7 वार्ड SC, 9 महिलाओं के लिए रिजर्व और 19 वार्ड जनरल। कालका शिमला ट्रैक पर 12 से 15 सितंबर तक 10 ट्रेनें प्रभावित। GMSH 16 में शुरू हुई थायराइड विटामिन की जांच, 1.5 माह से किट खत्म होने से भटक रहे थे मरीज। PGI के एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर में शुरू हुई सिटी स्कैन सुविधा, अब दूसरे विभाग या सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी स्थानीय खबरें। अब एक पॉजिटिव न्यूज के साथ आपको गीत संगीत की दुनिया में लिए चलेंगे। कहते हैं इंसान को अपना शौक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यह हमारे अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी होता है। कुछ ना कुछ उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की और कुछ नया कर दिखाने की कोई भी उम्र नहीं होती। ऐसी एक खबर हमारे पास है। भारत वंशी वसुधा ने अमेरिकी गणितज्ञ को 92 की उम्र में मैथ से जोड़ा और इनकी जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी थ्योरी। इंसान का शरीर भले ही कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन उसकी गणितीय यात्रा खत्म नहीं होती, वो नई पीढ़ी के जरिए आगे बढ़ती रहती है।

0: आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंचे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो रेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के 131 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। यूएस ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आज पहले सेमीफाइनल में रूसी खिलाड़ी करेन खाचनोव को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आयरना सबालेंका आज रात न्यूयॉर्क में फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का।

0: गढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए बीएसएनएल फाइबर का 495 वाला 100 एमबीपीएस प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़।

0: Good, but.
1: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

0: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। आप सबके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सफर सुरीला सा। इस कार्यक्रम में फिल्मी गीत शामिल किए जाते हैं और कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं जमाई राजा फिल्म से। आवाजें हैं अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सफर सुरीला सा कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा भैया फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: सफर सुरीला सा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड,
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड एट एसयू 845 एनएसी मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम पॉप टाइम का।
3: पॉप टाइम। पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
4: हेलो, मेरे मैंगो जूस जैसे खट्टे मिठे पाजी।
3: हेलो पिंके, आज अकेले ही? शन्नो जी कहाँ हैं?
4: पाजी, शन्नो जी तो सेल्फी की कायल हो

0: ਰਹੀ ਹੈ ਢੀ ਕਰਕੇ।
1: हाँ पिंके, शन्नो जी तो कायल हैं सेल्फी की, बहुत सेल्फियां खींचती हैं शन्नो जी।
0: ओहो पाजी, वो कायल जब चोट लगती है खून निकलता है, वो वाली कायल टीड़ी टी करके।
1: ओहो हो, अच्छा अच्छा, घायल।
0: हाँ जी कायल।
1: पिंके क्या हुआ शन्नो जी को?
0: पाजी बड़ी छुई मुई सी बनती हैं शन्नो जी, कई बार कहा है भाई इतनी सेल्फियां ना लिया करो टीड़ी टी करके, पर वो है कि मानती नहीं।
1: पिंके पर हुआ क्या है शन्नो जी को?
0: पाजी अब क्या बताऊं यार, सुबह पार्क में झूला झूल रही थी टीड़ी टी करके, बस झूला झूलते झूलते पता नहीं दिमाग में क्या आया, झूले पर सीधी खड़ी हो गई। जैसे ही सेल्फी लेने के लिए वो खड़ी हुई, चूल्हे समेत तड़ाम करके नीचे टीड़ी टी करके। पाजी शन्नो जी भी पूरी टीट है, गिरते गिरते भी सेल्फी खींच के मुंह किताब यानी फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया, मी गॉट फट्टर विद चूल्हा टीड़ी टी करके।
2: ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗੇੜੀਆਂ, ਜਰੀਆਂ ਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗੇੜੀਆਂ।

0: मेछी भाजी फटाफट सरकारी एसी चलाओ ना, गर्मी ने वट काट दिए हैं टीडी टी करके।
1: हाँ पिंके, वाकई गर्मी तो बहुत है।
0: तो पाजी फटाफट सरकारी एसी चलाओ ना, मेरा मुंह तो ऐसे झांक रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने संगमरमर वाला ताजमहल देखा हो टीडी टी करके।
1: हाय हाय पिंके, आज तो बड़े संगमरमर बन रहे हो, क्या बात है?
0: पाजी आपको मेरे मार्बल बनने पर बिल आ रहा है टीडी टी करके। फटाफट एसी चलाओ, हाँ बातें ना बनाओ टीडी टी करके, और जरा पाइया को ठंडी सरकारी हवा का हम भी पूरन आनंद ले लें टीडी टी करके।

0: पिंकी सुधर जाओ।
1: ओए होए पाजी, अब चला दो ना सरकारी एसी के छोटी सी पर्ची पर लिख के दूं टीडी टी करके।
0: नहीं नहीं पिंकी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लो चल गया एसी।
1: हाय हुण आई मेरी जान में जान। वैसे भाई बड़े दुखी हो के चलाया अपने सरकारी एसी। जैसे सारा बिजली का बिल आपकी जेब से जाएगा मेरे दुखी राम भाजी।
0: पिंके तुम भी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो।
1: भाजी आज शन्नो जी यहाँ पे होती ना तो इस सरकारी एसी के साथ एक सेल्फी जरूर लेती टीडी टी करके।
0: एसी के साथ सेल्फी?
1: और नहीं तो क्या, आलूओं के साथ सेल्फी लेती। पाजी अब तक तो शन्नो जी ने सरकारी एसी के साथ सेल्फी लेके मुंह किताब यानी फेसबुक पर डाल भी दी होती टीडी टी करके। इंजॉयिंग ठंडी हवा विद सरकारी एसी टीडी टी करके।
0: अच्छा
1: हाँ जी भाजी, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, आजकल शन्नो जी इतनी सेल्फियां लेती हैं कि मोबाइल भी बोल उठता है। हाय ओए, एक मिनट चैन नहीं लेने देती ये सेल्फिश।

पाजी शन्नो जी को सेल्फ एरिया हो गया, सेल्फ एरिया टी टी टी करके। अच्छा हाँ जी पाजी, शन्नो जी कहती हैं कि मोबाइल फोन में सेल्फी मेरे से ज्यादा वधिया कोई नहीं ले सकता टी टी टी करके। पाजी मैं सब्जी बनाता हूँ, शन्नो जी फटाफट सब्जी के साथ सेल्फी ले लेती हैं। मैं रोटी बनाता हूँ तो रोटी के साथ फटाफट सेल्फी टी टी टी करके। माई हब्बी मेकिंग फुलका। अच्छा हाँ जी भाजी, शन्नो जी के साथ साथ मैं भी बड़ा मशहूर हो गया हूँ फेसबुक पे टी टी टी कर।

0: हस्बैंड से हब्बी हो गया हूँ टीडी टी करके। ओए होए पाजी क्या बताऊं, एक दिन तो वो पीली पीली पूंडियां होती है ना, उन पूंडियों की खखर, मेरा मतलब है पूंडियों के छत्ते के साथ सेल्फी ले रही थी शन्नो जी। बस जैसे ही शन्नो जी ने क्लिक किया, पूंडियों ने उड़ के मेरे मुंह पर दे डंग ते डंग, दे डंग ते डंग।
1: ओहो
0: बस ओहो, ओ नहीं पाजी, उन पूंडियों ने मेरा मुंह सुजा सुजा के सेल्फी पलवान वर्गा बना दिया टी टी टी करके।
1: ओहो बेचारा पिंका।
0: पाजी चार पांच दिन तक तो ऐसे ही मैं सेल्फी पलवान बना घूमता रहा टी टी टी करके। पाजी यहां तक के लोग मुझे टाउट करने लगे, सेल्फी पलवान।
1: देखा पिंके, शन्नो जी की वजह से किस तरह से तुम कांगड़ी पहलवान से सेल्फी पहलवान बन गए
0: ना। अब मैं दंगल लड़ूं पूंडियों के साथ टी टी टी करके।

0: कर गई चुल।
1: पिंके, आजकल सेल्फी का बहुत क्रेज है।
2: हाँ जी भाजी, हर बंदा सेल्फी सा हो गया टीडी टी करके।
1: बिल्कुल ठीक कहा पिंके।
2: भाजी एक दिन हम ना पचकूला गए थे टीडी टी करके।
1: क्या करने?
2: शादी करवाने।
1: पर तुम लोग तो
2: शादी शुदा है भाजी, हम तो हम अपनी नहीं मामे के लड़के की शादी करवाने गए थे टीडी टी करके।
1: ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा।
2: भाजी बड़ी देर से समझे, आप भी ना 2G हो, अब तो 5G हो जाओ टीडी टी करके।

0: अच्छा पिंके, फिर क्या हुआ?
1: पाजी, शन्नो जी ने जैसे ही उस शादी वाले होटल में एंट्री की, दे सेल्फी दे सेल्फी दे सेल्फी दे सेल्फी।
2: कभी गोल गप्पे खाते हुए, कभी चाट खाते हुए, कभी टिक्कियां खाते हुए, और कभी सलाद की प्लेट के साथ, कभी दूल्हे के साथ, कभी दुल्हन के साथ सेल्फी। ओए होए होए होए, शन्नो जी के मोबाइल फोन के कैमरे की भी टीडी टी हो गई। और मोबाइल फोन का कैमरा बोल उठा, ओए होए, इतनी फोट में तो दूल्हा दुल्हन की नहीं खींची होंगी। पूरे ब्याह में बीबी जितनी तूने सेल्फियां ले ली टीडी टी करके।
0: पिंके, शन्नो जी को बहुत शौक है सेल्फी लेने का। सेल्फी लेना भी एक कला है।
2: हाँ जी भाजी, इसी कला के चक्कर में शन्नो जी ने एक टैक्सी, वही जिसे आजकल कैब शैब कहते हैं, उसके ड्राइवर को कान चक्कर बना दिया था टीडी टी करके।
0: अच्छा, कैसे पिंके? पूरी कहानी बताओ ना जरा।
2: क्यों, मैं आपकी नानी हूँ टीडी टी करके। पूरी कहानी सुनाओ ना जरा।
0: ओहो पिंके, बताओ भी।
2: पाजी, हम जैसे ही शादी वाले होटल से बाहर निकले, वो कैब का ड्राइवर अपनी गड्डी में आराम से बैठा हुआ था टीडी टी करके। इतने में शन्नो जी ने उससे कहा, भाई साहब, कितनी सोहनी सजावट है इस होटल के गेट की, इस गेट के बाहर जरा हमारी एक फोटो तो खींच दो टीडी टी करके। भाजी, ड्राइवर ऐसे हमारी फोटो खींचने आया जैसे सुभाष कई फिल्म की शूटिंग करने आया हो टीडी टी करके।
0: अच्छा।
2: हां जी भाजी, वो कैबी ड्राइवर एक फोटो खींच के मोबाइल फोन शन्नो जी को वापस करने लगा। शन्नो जी ने फिर कहा, भाई साहब, एक फोटो ना यहां से खींचो जरा। उसने वहां से भी फोटो खींच ली। बस फिर क्या, एक एक करके 50-60 फोटो खिंचवा ली शन्नो जी ने टीडी टी करके। वो कैबी ड्राइवर तो रोने ही लगा, अरे मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। अच्छा, एक फोटो मैं अपने तरीके से खींचू। आप लोग जरा इधर आओ, थोड़ा सा इधर। हाँ पाजी, हम उधर चले गए।
0: अच्छा, फिर क्या हुआ?
2: पाजी, जैसे ही वो कैबी ड्राइवर फोटो खींचने लगा, शन्नो जी ने उससे कहा, भाई साहब, थोड़ा आगे आके फोटो खींचो। जैसे ही वो कैबी ड्राइवर आगे आया, अचानक
0: क्या हुआ पिंके?
2: कैबी ड्राइवर गटर में।
0: ओहो बेचारा।
2: पाजी, एक तो वो कैबी ड्राइवर गटर में लटका हुआ था, ऊपर से शन्नो जी उससे कहने लगी, हाँ, इस गटर से खींचो फोटो हमारी, बहुत बढ़िया आएगी टीडी टी करके।

0: ओहो पिंके, तुम लोगों ने उस कैब ड्राइवर को बाहर नहीं निकाला?
1: पाजी निकाला ना, 25-30 फोटो खिंचवाने के बाद। पाजी जैसे ही वो गटर से बाहर आया, सीधा भागा अपनी कैब की तरफ। आए मेरी तौबा, आज के बाद किसी सवारी की फोटो नहीं खींचूंगा, पावे लाख रुपया दवे टीडी टी करके।
0: पिंके तुम लोग भी ना बस।
1: बस नहीं, बंदे हैं हम।
0: वैसे पिंके, आजकल कई लोग सेल्फी लेने में बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं, तो कई लोग दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल भाजी, आधी दुनिया पागल की हुई है इस सेल्फी ने टीडी टी करके। कोई चलती ट्रेन के गेट के बाहर लटक के फोटो खिंचवाता है, तो कोई किसी पहाड़ी की चुंज पे जाके ना वहां सेल्फी लेता है। भाजी वो मूर्ख प्राणी ये नहीं जानते कि अगर आप सेल्फ सलामत रहोगे तभी सेल्फियां ले पाओगे टीडी टी करके।
0: पिंके बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं सेल्फी लेते हुए कुछ लोग।
1: हां जी भाजी, रब ने चंगी भली शक्ल दी है, हैं? सेल्फी लेते हुए ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे जैसे दशहरी आम रेड़ी में पड़े पड़े सूख गया हो टीडी टी करके। और कुछ ऐसे हंसेंगे जैसे बच्चों को डरा के सुलाना हो।
0: पिंके मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा काम करते ही क्यों हैं जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बने।
1: हाँ जी पाजी, जो करेंगे सो भरेंगे, आप क्यों पे उदास हैं? अब ना आप मेरी परेशानी का कारण ना बनो, एक बढ़िया सा गाना सुना दो, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: मेछी भाजी अब मैं जाऊं, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है, टीड़ी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर।
0: अच्छा भाजी, ओके बाय।
1: बाय पिंके। श्रोताओ, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पॉप टाइम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम। ये आकाशवाणी है, विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
5: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
5: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं, माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
5: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
6: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अब आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
7: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में आप

सभी का स्वागत करती है मोनिका ठाकुर और आपकी फरमाइश पर आधारित ये कार्यक्रम रहता है। अभी से लेकर ठीक 12 बजे तक फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम में आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है AIR चंडीगढ़। कार्यक्रम में पहली फरमाइश हम तक पहुंची है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुघ, अश्विनी चुघ, गोविंद चुघ, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ठिंगरा, पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और इसके अलावा सूरज चौहान तहसील ठियोग से ये सुनना चाहते हैं एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया है इसमें शंकर जयकिशन ने।

0: ज्वार भाटा फिल्म से आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने। इसके अलावा गांव लोहगढ़ ठाकुरांगवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम और अगला गीत आप सुनेंगे कृष्णा फिल्म से। आवाजें हैं अभिजीत और साथियों की, संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहा है गांव कुतुबपुर सरसावा से निखिल, अनमोल, कनक, शिवांश और पूरी बंसल फैमिली ने। इसके अलावा कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। इसके साथ ही दतुरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा भी यही गीत सुनना चाहते हैं।

अब आप सुनेंगे अनुरोध फिल्म में किशोर कुमार को संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू ने। इसके अलावा रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी, दीपांशु गुलाटी, सेक्टर 9 से पंचकुला से ये हमें फरमाइश लिख भेज रहे हैं।

धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-44444 पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, आराध्या सिंह, अनंत कायरा और चंडीगढ़ सेक्टर 23 से विक्की, रेणु, बुलबुल, अक्षी, इसके अलावा जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह सुनना चाहते हैं चंबल की कसम फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, संगीत है खयाम का।

ललितापाल, हुकुमचंद, ईशु, वनीशु, दुधला मंडी, अंबाला कैंट से। इसके अलावा दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू सुनना चाहते हैं उदित नारायण साधना सरगम की आवाजों में एक लड़का एक लड़की फिल्म का गीत। संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम, जो कि आपकी फरमाइश पर आधारित रहता है। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है लच्छनपुर से रामजी साहू जीवन लाल रजक की। इसके अलावा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ये सुनना चाहते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पवन कन्नौजिया, वंदना कन्नौजिया, गरिमा कन्नौजिया श्री आनंदपुर साहब से फरमाइश लिख भेज रहे हैं। ये सुनना चाहते हैं धड़कन फिल्म का गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम।

नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा सुनना चाहते हैं रास्ते का पत्थर फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में अगली फरमाइश आई है। पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा की। मौसम फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह की, संगीत है मदन मोहन का।

अब आप सुनेंगे तड़ीपार फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहा है सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, और लीजिए पेश है आपकी पसंद पर ये गीत।

अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर को लैला मजनू फिल्म में, संगीत है मदन मोहन और जयदेव का। इस गीत को सुनना चाहा है सतीश कुमार, सुनीता कुमारी, कृष्णा शर्मा, शैरी शर्मा। ये फरमाइश लिख भेज रहे हैं सेक्टर 42 बी चंडीगढ़ से।

गीत लोफर फिल्म से है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है पंडित केशव गर्ग, रवि गर्ग और कल्पना शर्मा, गोविंद एनक्लेव, सेक्टर 126 मोहाली से।

0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता

0: प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: सुरीली धड़कन यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है महान संगीतकार शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की यादों से। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान संगीतकार जयकिशन दया भाई पांचाल को, जिन्होंने शंकर के साथ मिलकर शंकर जयकिशन की सबसे सफल और लोकप्रिय जोड़ी बनाई थी और भारतीय संगीत का नक्शा बदल दिया था। तो आज हम याद कर रहे हैं और आज हम सुनेंगे महान संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत से सजे सवरे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जंगली।

मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: से जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है श्री 420।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है कन्यादान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविता।

0: जाएं।
1: इंट्यूशन जी ने कहे ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की

महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

कार्यक्रम में अगली आवाज है मुकेश की, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है आशिक।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दीवाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है राज हट।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है अमन।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने सुने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे कुछ यादगार सदाबहार गीत। आज शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की याद का दिन है। साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए आप प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित होगा 2:00।

0: शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। 5:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित होगा। शाम 5:30 पर कार्यक्रम होगा सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पैटर्न राइडर साइकिलिस्ट अमित शर्मा से श्री रमेश कपूर की बातचीत। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर, शाम 7:47 पर और सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया। शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज ये कार्यक्रम गीतकार हसरत जयपुरी द्वारा प्रस्तुत होगा। रात 8 बजे हवा महल में सुनो कहानी के अंतर्गत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पिंजर का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित होगा रात 8:15 पर। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार जयकिशन पर केंद्रित रहेगा और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
3: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
2: ब्रिक्स देशों के बीच कृषि, व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समर्पित ब्रिक्स एग्री पोर्टल जल्द जारी किया जाएगा। ये निर्णय ब्रिक्स में कृषि उत्पादों और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित सत्र के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिक्स व्यापार परिषद भारत के सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने की। डॉ. साहनी ने कहा कि ब्रिक्स एग्री पोर्टल ब्रिक्स देशों के किसानों, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यवसायों को जोड़ने वाला एक साझा मंच तैयार करेगा। ये व्यापक बाजार पहुंच

पहुँच प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान को सुगम बनाएगा तथा कृषि व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर खोलेगा। डॉक्टर साहनी ने कहा कि ब्रिक्स एग्री पोर्टल किसानों के लिए एग्रीटेक मशीनरी और कृषि मशीनीकरण हेतु किफ़ायती वित्त पोषण उपलब्ध कराने में मदद करेगा। कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगा तथा बेहतर फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा। हरियाणा में सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कल चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली। सरकार ने पालिका रोल कर्मचारियों को 440 रुपये मासिक वर्दी भत्ता और 2000 रुपये जोखिम भत्ता देने पर सहमति जताई है। वहीं सीवरमैन के वेतन में 2100 रुपये बढ़ोतरी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सरकार ने पालिका रोल पर और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने और निलंबित नियमित कर्मचारियों की बहाली की मांग भी मान ली है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और रिक्त पदों पर भर्ती तेज करने सहित

प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा। हरियाणा में सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कल चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली। सरकार ने पालिका रोल कर्मचारियों को 440 रुपये मासिक वर्दी भत्ता और 2000 रुपये जोखिम भत्ता देने पर सहमति जताई है। वहीं सीवरमैन के वेतन में 2100 रुपये बढ़ोतरी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सरकार ने पालिका रोल पर और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने और निलंबित नियमित कर्मचारियों की बहाली की मांग भी मान ली है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और रिक्त पदों पर भर्ती तेज करने सहित कई अन्य मांगों को भी स्वीकार किया है। करनाल जिले में गत एक सप्ताह में डेंगू के 2 और स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले सामने आए हैं। जनवरी से अब तक जिले में डेंगू के 19 और मलेरिया के 2 मरीज मिले हैं। जिले की नोडल अधिकारी डॉक्टर अनु ने बताया कि विभाग पूरी तरह सतर्क है, बीमारी की रोकथाम और मच्छरों के नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। विभाग ने शहरी क्षेत्रों में 29 और ग्रामीण क्षेत्रों में 150 टीमें तैनात की हैं, जो घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जाँच के साथ साथ लोगों को जल भराव रोकने और साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से करनाल के नागरिक अस्पताल, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, उपमंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस की टीम ने कल पुन्हाना मार्ग पर झचका रोड मोड पर एक व्यक्ति को देसी कट्टे व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग और पुलिस जांच अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान दिलशाद के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। गौवांश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। इस कड़ी में पशुपालन विभाग की टीम ने भिवानी जिले के गांव प्रहलादगढ़ का दौरा किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म छोटी सी बात के इस गीत से। आवाजें हैं KJ यसुदास और आशा भोसले की। संगीत दिया है साहिल चौधरी ने और शब्द रचना है योगेश की।

0: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म कलाकार में।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म में मोहम्मद रफी को। गीत को लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है OP नैयर ने।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: हमारे साथियों ने जो मैसेज भेजे हैं वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, और सबसे छोटी नदी अलवर के पास अरवरी नदी है, जो करीब 45 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। अनोखी रात ओरे ताल मिले नदी के जल में, सागर में संजीव कुमार। एक साथी ने लिखा है कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की क्रूज में 2 नाइट 3 दिन का सफर किया है मैंने। एक साथी मित्र ने लिखा है, जिसका नाम है जीवन धारा, उसका कोई नहीं किनारा। अगला कमेंट है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, बेटी और दामाद 2019 में केरल गए थे, तब हम बोट हाउस पर ठहरे थे, सुबह से पूरा घूम कर आए।

दोपहर का खाना, नाश्ता और रात का डिनर भी बोट पर ही ठहर कर किया। दूसरे दिन सुबह बोट से बाहर आए, बहुत अच्छा दिन गया हमारा। देखिए, जैसे जैसा मैसेज आपने लिखा था, हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ दिया। साथियों, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये एक बेहद संवेदनशील और लोकप्रिय फिल्म है नैया, जिसकी कहानी गंगा नदी किनारे बने एक छोटे से गांव की है। ये फिल्म मानवीय रिश्तों, निस्वार्थ प्रेम, समाज के बंधन और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसमें कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं, और इस फिल्म नैया के निर्देशक का भी नाम हमें बताएं। तब तक सुनते हैं यही गीत। आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। सोनू और गीता की इस प्रेम और संघर्ष की कहानी का निर्देशन किया था प्रशांत नंदा ने, जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जरीना वहाब के साथ नजर आए थे। और इस गीत में आवाज़ आपने सुनी येसुदास की, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन, फिल्म का नाम था नैया। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मेरी जन्मभूमि सिंध नदी के किनारे बसा है मेरा गांव। एक साथी ने लिखा है कि मेरी सोच ये है कि जीवन में हम सफर ऐसा होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, जो एक बार अपने साथी का हाथ पकड़ ले तो ता उम्र छोड़े नहीं, अपने हम सफर का साथ मरते दम तक निभाए, यही तो सच्चा प्यार और सच्चा साथ है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे घर में कोई आ गया था तो आधा प्रोग्राम तो निकल गया। अगला कमेंट है कि मेरे शहर में गंगा है, थोड़ी दूर पर पुनपुन भी मिलती है और सोन भी मिलता है। गंगा नदी का प्रारंभ गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए दूरी तय करती हुई समुद्र में गिरती है। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें आवाज है मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है कटी पतंग। तो इस फिल्म के कलाकारों के नाम और साथ ही निर्देशक का नाम भी हमें लिखकर भेज दें।

त्रिवेणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुत तेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ लाती है। अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना या एकांत में होना। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने भी पड़ते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा और रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिंदगी के सफर में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफर में कोई साथ दे दे तो अच्छा, और ना दे तब भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ही प्रस्तुत होना पड़ता है।

अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है, बेचैनी होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझा बुझाकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वे भले ही संसार के सम्मुख हों, लोगों से घिरी हों, लोग उनका उपभोग करते हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति एकांत के माहौल में ही होती है। एकांत में ही उनका प्रकटीकरण होता है, एकांत में ही वे अपना साकार रूप लेती हैं। इसलिए चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणास्पद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हो या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इसे हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें।

आज से 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हजारों लाखों फ्रेंड्स के बीच भी कोई अकेला हो सकता है, पर सोशल मीडिया के साथ हम इसे बखूबी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर होना और बात है, जबकि वास्तविक जीवन में कोई सचमुच अपना होना दूसरी बात। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट की धूम के चलते दुनिया भर में पल भर में संबंध बनाना आसान लग सकता है। हम अपने दोस्तों को संदेश, ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पर इन सब में कोई ऐसा अपना ढूंढना जो आपको आपकी अकेलेपन से निकाल सके, काफी मुश्किल होता है। इतनी सारी सोशल साइट्स के बावजूद अकेलापन अभी भी एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति अपने साथी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स नहीं, अपने सचमुच के दोस्तों और अपनों से अपने विचार मिलकर बांटें, हंसें और हंसाएं। परिजनों, माता पिता, पार्टनर, बच्चों, भाई बहन और दोस्तों से हमेशा जुड़े रहें, उनके काम आते रहें, उनकी समस्या का समाधान जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आप मदद लेते हैं तो दूसरों के मददगार भी बने। ये बेहद जरूरी है आज के इस समय में, जब हजारों की भीड़ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अकेलापन, तन्हाइयां महसूस करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे।

0: नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
1: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: jovi.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए।

0: पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है अपने हुए पराई।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज है किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है रंगोली।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती

0: है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है सन्यासी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है संगम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है शैलेंद्र, धुन है शंकर जय किशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों, आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गणेश पेठ पार्थी पुणे से, अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या, श्लोक और भैया, कोटवा नारायणपुर यूपी से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, कर्नाटक स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत, बडेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा, राजस्थान जोधपुर से अशोक बाणिया, प्रेमलता और सुमित बाणिया, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख। लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार। कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग शीतल, लोकेंद्र और रामबाबू मालवीय। ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषी, चिऊ माऊ और बिट्टू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आरएसपुरी, बीकेपुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता कृष्णा, सावित्री राज, प्रथम राज, अंजलि पलक, अमीशा अनुष्का, आशीष, लक्षिता जतिन, मनोहर लाल सोनगरा, सरोज दायमा, अखिल दायमा, एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा। बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निशा, निहारिका, सोनू और मोनू रावल। नजीरगंज नेपाली पाड़ा जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक लिंबू, रितेश लिंबू, उषा, ज्योति, किरण, दिरशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार। भुट्टो मंडी जिला फतेहाबाद हरियाणा से अमर वर्मा। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शबनम बानो।

आप सभी की पसंद पर सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गोविंद मुनीस का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद

है आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा, शानू और निमो। कोटद्दा बहादुर जिला मंदसौर एमपी से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाजियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाजार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम, जावेद उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ बीड़ शहर से पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव। इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल।

0: साशा जी।
1: हैं? अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नक्काल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
1: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, अरे आशा जी आप तो बुरा मान गई हैं। लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं। शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, टंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है?
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबी लाल जी, आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
4: अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा है? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: हाँ, अब तुम्हें कौन रोके भाई। हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुंचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
1: आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं? मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूं, आप ही की तरह।

0: ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो नहीं अटेंड कर सकता है?
1: नकाल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
0: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहाँ से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
2: बड़े साहब जी हैं?
0: है? ये कैसा सवाल है? मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
2: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
0: अरे
2: कब आएंगे?
0: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
3: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था?
2: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
3: जी।
2: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
3: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
2: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
1: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
2: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
1: अच्छा,
2: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
1: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बाग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
2: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
0: इसीलिए इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
2: सर आप बुरा ना माने तो एक बात को।
1: हाँ हाँ बोलो बोलो।
2: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
1: अरे श्रीमान जी हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
0: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
1: दफ्तर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
0: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
3: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
0: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ क्या नाम है आपका?
2: जी सत्यमूर्ति।
1: सत्यमूर्ति जी यहाँ आइए, एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना
2: जी?
1: आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
2: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना मैं आपका एहसान मानूंगा।
1: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा
2: जी?
1: अरे आपको क्या आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता?
2: जी जी जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ, इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
1: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई।
0: चौकन्ना टेलीफोन उठाना। ओ कहाँ मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
3: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
0: हिसाबी लाल जी।
1: सर आप सीनियर हैं।
0: ओहो ठीक है मैं ही उठाता।
1: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
0: लगता है। साहब जी आ गए, आज बहुत जल्दी आ गए
1: लगता है। साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
2: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
0: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।

0: श्यामत आ गई। पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
1: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
2: नकाल बाबू साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
0: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
3: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है, स्टुपिड। मेरा मुंह क्या ताकते हो, जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
4: अब जी सर।
5: सर अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
0: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा।
5: जी
0: हाँ, कल आना कल।
6: सजन कब आएगा, सजन कब आ।
0: चौकन्ना
2: जी। सर
0: सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
2: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
0: क्या,
2: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
0: हिसाबी लाल जी,
1: जी
0: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
1: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है?
6: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
1: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
0: कर लो।
1: आशा जी आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
7: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ।
1: ये भी ठीक है।
5: नमस्कार सर, कहिए क्या काम है।
8: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
0: हाँ ठीक है ठीक है।
1: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं।
5: जी हाँ।
2: नकाल बाबू
0: हाँ,
2: आपको साहब बुला रहे हैं।
0: ठीक है आता हूँ, आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
4: नमस्कार सर।
2: नमस्कार। नकाल बाबू
4: जी,
2: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
4: कहिए सर।
2: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है।
4: जी।
2: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है।
4: ओ।
2: और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
4: ओ, तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
2: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
4: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा।
2: वही तो मेरी समस्या है, अब जाऊं तो कैसे जाऊं।
4: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
2: नकाल बाबू
4: जी,
2: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं।
4: जी
2: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते।
4: जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
2: हाँ ठीक है, सारे डेट्स ठीक तरह से नोट कर।
4: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ।
6: उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
1: अरे ये क्या रट रहे हो नकाल बाबू।
4: साहब जी का टूर प्रोग्राम, 11 12 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
1: अरे वाह।
5: सर वो मेरा प्रमाण पत्र।
0: भाई बुजुर्गवार आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए, हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
5: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
0: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
1: सत्यमूर्ति जी आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
5: तो फिर मैं कब आऊं?
0: कल आना कल।
5: कल कल तो इतवार है।
0: ओहो तो सोमवार को आइए, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।

0: नक्काल बाबू
1: जी सर,
0: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
1: जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
0: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
1: पर सर, लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर, ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
0: खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड।
1: जी हाँ, होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए।
0: ये कैसी बातें करते हैं नक्काल बाबू
1: जी।
0: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
1: जी,
0: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा
1: जी,
0: और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
1: साहब जी, ये असल में सर्कुलर नहीं, सर्कुलर है।
0: खैर, अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए। उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
1: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 कॉफी मंगा लूंगा।
0: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
1: सर, आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगे।
0: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना?
1: जी हाँ साहब, हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर, तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
0: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
1: ओके साहब। सर, मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
0: अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम
1: जी?
0: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
1: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूं।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा।
1: और क्या,
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट। क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मूसल चंद।
2: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। आप खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट दो।
2: ये लीजिए। चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, एक रुपए में एक पैकेट। चना लीजिए चना।
0: अरे उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके। ओ चने वाले दादाजी
3: जी,
0: आइए जरा।
2: और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना?
1: दादाजी आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना?
2: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करती हैं? मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
0: क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
2: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।

0: मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
1: अच्छा, याद आया।
2: नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सत्यमूर्ति चलने वाला हूँ। पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। चला भाई चला, गरमा गरम चला।
1: अब ये चना खाने से हमें प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी। इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध द्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
0: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
1: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
0: मैं आशावादी हूँ।
3: हाँ, तुम हो ही आशा।
0: कम से कम तुम जैसी सिनिक कभी तो नहीं हो।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
3: पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी
4: हिसाबी लाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
3: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
4: मिर्चे भी कुछ
3: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
5: नक्काल बाबू,
2: क्या
5: कोई एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
2: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
5: आज फुर्सत नहीं है, कल आना कल।
0: हाँ तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
2: साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
0: अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
2: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर।
3: सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान हैं, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं।
0: वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
2: उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
0: हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
3: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
2: ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए।
4: बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
0: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
2: जी,
0: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
4: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
0: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
2: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
0: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और

0: प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
1: साहब जी, हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर?
2: हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है, मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा।
1: बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
0: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हा?

0: हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली है। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहां मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित होंगे।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुलाकर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबी लाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं। यही नहीं, वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और
4: उसके बाद बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए था। चना खाइए, चना।
5: अजी महाशय,
4: बड़ा मजेदार चना है।
5: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ, अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही है। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: भाई चना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना। मसालेदार चना, चना खाइए साहब, चना।
5: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा।
6: आपको वहां ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
7: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
8: ओ, समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
6: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
8: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र?
5: सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा।
6: इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
9: सर, मेरी अर्जी
6: आज नहीं होगा, कल आना, कल।
9: साहब जी मेरा प्रमाण पत्र।
5: आप जाओ भी, कह दिया ना कल आना, कल।
6: अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
8: क्या कहा, कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा।
6: क्या,
8: कल आना कल।
6: अरे सत्यमूर्ति जी मेरी नौकरी चली जाएगी।
8: हाँ भाई अब जाओ भी, कह दिया ना कल आना, कल।

कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थीं श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
4: उस
3: जहां फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफी आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये, या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और somehow एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं। एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते हैं नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
3: बिल्कुल, वो महफिल ही ऐसी होती है,
4: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो, पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इनका मानना है कि भाई जियो और जीने दो और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है, आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
3: तो बाबा आजमी ने आपको,
4: उन्होंने तो
3: एक राह दिखाई,
4: हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही है अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए, बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे। रियाज जब शुरू किए तो पता चला गले का जो चाम है
3: वो फ्लैट हो गया,
4: वो जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो दो साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
3: अरे बाप रे,
4: 2014 की बात है, एफटीआई के बाद, और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली एक इंस्टीट्यूट।

0: में जाएंगे, और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई, और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए, और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया, और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो, तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना, बट वो वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, यू नो, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप, वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहाँ हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
1: वाह।
0: और फिर हम 2 साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए, डिप्रेशन भी आया उस फेज में, क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि आप दो जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे, तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
1: कैसे निराशा का सामना किया?
0: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
1: कितना लंबा चला
0: ये चला? कुछ एक एक डेढ़ साल।
1: किसकी मदद मिली?
0: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी, ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा, पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहाँ पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी, मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से, उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम, और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था, और हमको समझ नहीं आ रहा था,
1: अपने ख्यालों में गुम थे,
0: अपने ख्यालों में, और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे, ये दूध उबल के गिर रहा है, और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
1: अरे बाप रे।
0: तो वो यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन, हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब यू नो आई वाज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे, क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं, और हम गाते भी अच्छा है, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही चीज कराते हैं, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से, यू नो वैम्प है तो बदमाश ही है, वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते, क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है, वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे। अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
1: बहुत बड़े सवाल थे।
0: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं, वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
1: मेरा दिमाग घूम गया।
0: हाँ। और फिर हम, आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ, तो हम अपने पापा को फोन किए, और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है। तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है। बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही हो तो फिर जल्दी नहीं चली जाए। तो हम बोले पता नहीं, 6 महीना, 1 साल। तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
1: क्योंकि ये ऐसे नहीं आ
0: सकती, ये ऐसे बात नहीं करती है। और फिर हम घर पहुंचे, और वो 1 साल बहुत परेशान रहे। मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी, उनको, माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती। एक साथ होता है तो ढाड़स बधा रहता है आपके पास। वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में, बट उससे ज्यादा कमी

0: थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था। किशोर कुमार के भक्त थे हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था।
1: गजब।
0: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड डायरेक्ट ऑल्सो। और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है, तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है।
1: कैसे अपने आप को संभाला और इस एक साल

0: डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं, तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है.
1: यू नो, हम तो इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद,
0: राय, मदद, हमको ये अंदाजा नहीं था. हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास, यू नो, टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर. ये सब समझ ही नहीं था हमको. बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको, तो बस हम, दैट वॉज अ गुड डिसीजन.
1: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप की गोद की तरफ लौटती है.
0: ये
1: दुनिया की सबसे प्यारी बात है.
0: सबसे प्यारी बात है. और ये मेरा सौभाग्य है मेरे माँ बाप ऐसे हैं. मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं. उसी समाज का हिस्सा है. पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी. कितनी बड़ी बात है ये.
1: बिल्कुल,
0: वो भी तो मर्द ही है ना.
1: बिल्कुल.
0: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है. थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है. पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को. आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा. आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है. और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को, मतलब, डांटा भी नहीं होगा शायद. बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो. तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते हैं, जाओ उड़ो. बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो. यू नो, बचपन में हमारे पापा, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर. तो हमें वो भी रोपना होता था. आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पस स्टूडियो है जैसे ये, कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था. हमें खुद का काम खुद करना है. तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो. क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे. ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे.
1: और इसलिए आप संभल गए.
0: इसलिए हम संभल गए.
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल,
1: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं.

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई।
1: बिल्कुल, पूरी तरह से।
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार।
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16। और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में। वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया। और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहाँ के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था। और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
0: झारखंड

0: यूपी है।
1: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था?
0: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता। और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है। तो बोला वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं। पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम। और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बो या बनी जई हो बनी के जोगिनिया रहो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है। या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी दादी गाती थी, वो गाने उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
1: ओहो, ये बहुत बड़ा झटका था।
0: सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक यूट्यूब चैनल है उर्दू पोएट्री,
1: मनीष गुप्ता का
0: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात।
1: अच्छा, ओ हो हो हो हो, वो आपने किया था?
0: जी
1: देखिए मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक है
0: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये। और क्योंकि हम यू नो जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
1: खूब चलता है। वो
0: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।
1: ओरिजिनली छाया जी ने गाया
0: जी,
1: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
0: ओ कैसा ये सर्कल है। हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है। और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
1: और मैंने क्या समझा पता है?
0: हाँ।
1: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने वो वीडियो बहुत देखा है।
0: अच्छा।
1: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ
0: अच्छा।
1: कुछ कविताएं पढ़ी हैं।
0: ओहो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
1: दो कैमराज
0: लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज भोजपुरी में। अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन। उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे। ऐलान किया था,
0: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
1: वो भी हमारे दोस्त।
0: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही। आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दे।

0: बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है, और वो खूब चला,
0: खूब चला
1: और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
1: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट
1: वो भी मजेदार है, उसमें तो अपनी पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ उसमें तो
1: जब जो मर्जी आई है गाया है,
0: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
1: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
0: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ,
1: पैरेलली शुरू हुआ, और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये,
0: हाँ, ये
1: मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
0: ये कमाल है, 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
1: और वो भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला,
1: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, AR रहमान सुन ले हमको बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
1: और उन्होंने सुन ली,
0: और उन्होंने सुन ली।
1: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
1: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
1: उनका भी,
0: उनका भी जन्मदिन है,
1: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
1: अरे बाप रे
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे AR रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, AR रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि AR रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे, एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
1: सारे सुने होंगे।
0: और यू नो AR रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माई इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
1: ये एक जरिया बना।
0: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और AR रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है. किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं.
1: वाह.
0: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए.

0: है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा ये जो
1: लेकिन
0: शुरू
1: ये
0: किए।
1: 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
0: हाँ
1: कंफ्यूजन के साल
0: हाँ
1: थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए। आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके। अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी, लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था। और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना ए आर रहमान के पास प्लीज।
1: वाह वाह वाह।
0: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं,
1: उन्होंने कहा था
0: तो उन्होंने
1: इंस्टाग्राम
0: कहा
1: पे।
0: था इंस्टाग्राम पे।
1: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
0: तो ये 3 साल पहले की बात है, मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही, पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था
1: कमाल
0: कि
1: है।
0: पहुंचेगा।
1: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
0: ओहो कैसे बताएं हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहां रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहां पर हमको बुलाया गया था
1: चेन्नई में ए आर
0: चेन्नई
1: रहमान
0: में,
1: स्टूडियोज
0: ए आर
1: में।
0: रहमान जी का जो स्टूडियो है, पंचतन नाम है उसका, वो उनका
1: हाँ
0: घर है, होम स्टूडियो है उनका।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम पहुंचे तो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में ए आर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है तुमको क्या चाहिए। तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए, तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और ए आर रहमान का एक गाना हो सोलो।
1: एग्जैक्टली ये बोला।
0: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: जेवा पे
1: क्या
0: सरस्वती
1: बात है,
0: विराजती हैं भाई, विराजती
1: क्या
0: हैं,
1: बात है, क्या बात है। और ये
0: विराजती हैं।
1: संभव हुआ।
0: ऐश्वर्य ने बोला भी कि ए आर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नज़र में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर ए आर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे, आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा ए आर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
1: अरे गजब।
0: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था,
1: एग्जैक्ट 6 महीने। और
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
0: जादुई है, जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
1: दीपाली, ये एक ऐसा गाना है, मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज जिस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गईं, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुन कर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
0: जी जरूर।

0: जब आप ये सारे गाने एक के बाद एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं
1: है,
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर, प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं।

0: था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में। वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बहुत बड़ी
0: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके
1: संशय था।
0: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है। ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है। ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं। ये जीनियसेस हैं ये लोग। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है। और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है, कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
1: वाह वाह।
0: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा। ये बहुत अपना सा, ये
1: बिल्कुल
0: सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की। इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार, ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
1: बिल्कुल
0: और
1: वो सुन के
0: इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
1: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी हैं
0: आ
1: जो, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
0: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम है,
0: कंप्लीट एल्बम है। यस,
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना। जिसने
1: अच्छा,
0: गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका,
1: बिल्कुल
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट।
1: उसको ये मौका दिया गया,
0: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है रहमान सर।
1: पर हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।

0: लाए मस्कारा, अखियां लगाए रखना, किसमस यारा लाए मस्कारा, लकियां निभाए रखना।
1: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे सामने।
2: नहीं थे जी।
1: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
2: जी,
1: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
2: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
1: क्या बात,
2: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल,
2: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला ना, सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है। वो

0: वो हमेशा बजाते हैं और
1: उनका काफी, आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है।
2: उनके
1: हम
2: लिए एक समाधि जैसा है।
1: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
2: बिल्कुल
1: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद,
2: वाह वाह
1: और
2: वाह
1: उसके
2: वाह
1: अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं, नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम ए आर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम,
2: ओ हो।
1: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
2: क्या बात है, क्या
1: जी,
2: गाया?
1: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है,

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक लगा। ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मे भी इसलिए शायद, वेरी गुड, एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है, और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है। और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
0: असली रूह
1: इनमें है। तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे, वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था। और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास। उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है, क्या बात है।
1: वो लोग अटकते हैं इसमें।
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है, और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
0: क्या बात है।
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्या की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
1: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्या ने एक रियलिटी शो जीता था। वो बिहार से पहले थे, और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्या भी खड़े थे।
0: अच्छा?
1: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्या को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्या का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है। बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको

0: बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था, तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
1: मतलब बरसों बाद
0: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे। मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त, एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, घर ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात ये है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत,
1: है ना, बहुत। अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहाँ एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह,
0: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है। क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है,
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम। वो जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है, और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो,
0: हाँ,

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था,
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी,
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो, लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज़ सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं। चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हों, वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग,
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि बदलती दुनिया को पुराने संस्थानों द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि नेताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों के विकास में ग्लोबल साउथ के देशों की समान भागीदारी होनी चाहिए। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा ताकि हर साल अध्यक्षता बदलने के बावजूद समूह की संस्थागत गति बनी रहे।
2: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। इससे पहले श्री पेजेश्कियन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैनिकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री

बेन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के लोगों और दुनिया में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि नया वर्ष सभी के लिए शांति, बेहतर स्वास्थ्य और सतत प्रगति लेकर आए। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 5:05 हुए हैं, बस थोड़ी ही देर में हम आपको कुछ फिल्मी गीत सुनवाएंगे।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: तो आइए अब सुन लेते हैं कुछ फिल्मी गीत।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारी का लिखा हुआ गीत, इसे आशा भोसले ने गाया है। फिल्म का नाम सावन की घटा।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: मोहम्मद रफी को अब हम सुनते हैं और ये है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत।

आपकी परछाइयां फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्मी गीत आप सुन रहे थे विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से। लीजिए अब सुनिए एक प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्तवाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्तवाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट,

09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

विक्रम ये लम्हे। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रायोजित कार्यक्रम। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम है उमंग, अब से बस थोड़ी ही देर में। श्रोता, हम आपको बता दें आज शनिवार है और आज 5:30 पर NCERT कार्यक्रम उमंग के बजाय हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इसमें आप भेंट कर सकते हैं साइक्लिस्ट पैट्रन राइडर अमित शर्मा के साथ। इनके साथ बातचीत करेंगे रमेश कपूर। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: Gems of India Challenge.

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, आज शाम 6:45 पर सुनवाएंगे आपको प्रायोजित कार्यक्रम आंगन इंडिया। याद रखिएगा, शाम 6:45 पर।

0: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं, तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारी हम सफर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी शौक को यदि जुनून, अनुशासन और रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ाया जाए तो वो आपकी पहचान बन सकता है। इन्होंने साइकिलिंग को केवल स्वास्थ्य और फिटनेस से जोड़कर नहीं देखा, बल्कि इसे कला, तकनीक, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक जागरूकता से जोड़ दिया। इनकी यात्रा विशेष रूप से युवाओं को प्रेरणा देती है कि

0: अपने आसपास मौजूद रिसोर्सेज को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। सड़कें वही हैं, साइकिल वही है और जीपीएस तकनीक भी वही है, लेकिन उसे देखने इस्तेमाल करने का नजरिया अलग है। और इनके लिए हम यही कहेंगे कि जहां लोग सड़कों पर सफर करते हैं, ये उन्हीं सड़कों पर अपनी कला की कहानी लिखते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं पैटर्न राइडर साइकिलिस्ट श्री अमित शर्मा। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वेलकम करने के लिए, और मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार करता हूं।
0: अमित जी, इस सफर की हम लोग शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, तो कैसे बीता आपका बचपन?
1: बचपन मेरा चंडीगढ़ में ही बीता सारा। मैं जन्मा भी यहीं और पला भी यहीं, चंडीगढ़ से ही हूं शुरू से। शुरू में हम सेक्टर 15 रहते थे, तो स्कूल भी साइकिल पे जाया करते थे। 12वीं तक साइकिल किया, उसके बाद छूट गया, फिर कोविड के बाद दोबारा साइकिल शुरू हुआ। यही मेरी बचपन की कहानी है
0: जी। और साइकिलिंग का जुनून कब कैसे हुआ आपको?
1: जैसे कि कोविड के बाद सभी घर में बैठ गए थे, तो मैं भी घर में बैठ गया था, फ्री होता था, कोई काम नहीं होता था, तो उस टाइम हमने सोचा कि साइकिलिंग शुरू करें। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हुआ, तो दोस्तों के साथ मिलके मैंने साइकिल ली और शुरू की। शुरू में तो 1-2 किलोमीटर चलना भी बहुत मुश्किल होता था, स्टेमिना नहीं होता था। फिर हौले हौले स्टेमिना बना, फिर साइकिलिंग शुरू की, ग्रुप्स ज्वाइन किए, फिर लंबी लंबी दूरियां नापते थे। ऐसे मेरा साइकिलिंग का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू हुआ
0: जी। तो ये जो सेकंड चैप्टर है आपका साइकिलिंग का, आप कहां कहां गए साइकिल से अपने?
1: शुरू में तो हम लोकल ही करते थे सुखना लेक तक। वैसे तो सुखना लेक पहले हम गाड़ी में जाया करते थे, बट अब साइकिल से जाना शुरू किया, अच्छा लगा। उसके बाद ग्रुप ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हम लॉन्ग राइड्स करते थे, जैसे फतेहगढ़ साहब चले गए, रोपड़ तक चले गए, सिसवां डैम है, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह है चंडीगढ़ के आसपास जो थोड़ी सी दूरी पे है पर बहुत अच्छी और नेचर वाली जगह है जहाँ हम जाते हैं साइकिल पे
0: जी। तो किसने प्रेरित किया कि आप एक बार फिर से साइकिलिंग करें और लंबी लंबी यात्राएं करें?
1: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं बताना चाहूंगा, मेरा दोस्त है राकेश जो मेरे को लेके गया, उसने मेरे को साइकिल दिलाई, और हमने 3-4 लोग जो सैर किया करते हैं डेली बेस पे, हम तीनों ने शुरू की साइकिलिंग, और फिर थोड़ी देर बाद ग्रुप ज्वाइन किया, फिर लंबी राइड स्टार्ट की। तो धन्यवाद मेरा राकेश को जिसने मेरे को साइकिलिंग में दोबारा लेके आया।
0: तो साइकिलिंग का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज तक आप भूले ना हो इन जो यात्राएं आपने की साइकिल पर?
1: सर, ये मेरा साइकिलिंग का जो एक्सपीरियंस है, मेरी लॉन्ग राइड्स ही मेरा साइकिलिंग का मेन एक्सपीरियंस है। मैं अमृतसर 2 बार कर चुका हूँ चंडीगढ़ से, जो कि 230 किलोमीटर है। हमने 2-3 लोगों ने भी इकट्ठी की है, 1 बार ग्रुप के साथ भी की है, तो बहुत मजा आता है लॉन्ग राइड्स में। तो मीन्स 10-12 घंटे की राइड्स होती है, बीच में हम एंजॉय करते हैं, इकट्ठे खाने खाते हैं, और वाकई में फिर दरबार साहिब पहुंच के और मजा आता है।
0: तो जिस तरह से आपने बताया कि आप लॉन्ग जर्नी है उसको आप करते हैं साइकिल पर, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि सेफ जर्नी रहे और आपका सफर जो है वो सुहाना हो?
1: सर, सेफ्टी के रिगार्डिंग मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है, तो उसके लिए लाइट्स होनी बहुत जरूरी है साइकिल पे। जैसे स्कूटर पे लगी होती है, गाड़ियों में लगी होती है, तो हम एग्जैक्टली वही लाइट्स आगे और पीछे साइकिल पे लगा के चलते हैं, ताकि पीछे से गाड़ियां आए तो उनको दिखे कि कोई आगे जा रहा है, क्योंकि रात का समय होता है तो बहुत मुश्किल होता है, गाड़ियों को नहीं दिखता, तो इसलिए लाइट्स बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, हेलमेट, सर पे हेलमेट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप छोटी राइड्स करो चाहे आप लंबी राइड्स करो। हेलमेट के बिना घर से कोई भी 2-व्हीलर हो, जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ही हो, उसमें बहुत जरूरी है सेफ्टी, बहुत जरूरी है। और हाइड्रेशन, तीसरा हाइड्रेशन, पानी पीते रहना हर 20 मिनट के बाद जरूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हाइड्रेशन, लाइट्स और हेलमेट, ये तीनों मैं कहूंगा बहुत जरूरी है, चाहे लॉन्ग राइड्स हो चाहे शॉर्ट राइड्स
0: जी। और जब आप लंबी यात्राएं करते हैं तो कभी आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आ गई हो जिससे आपको लगा हो कि यहां पे आके कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है?
1: अगर लंबी राइड्स की बात करूं और उसमें कोई इशू आया हो या प्रॉब्लम आई हो, तो सिर्फ एक ही होती है, जब साइकिल ब्रेकअप हो जाए, पंचर हो जाए, हम लगा लेंगे। हम सारा इंस्ट्रूमेंट साथ लेके चलते हैं, एक ट्यूब साथ में रखते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए, क्योंकि हमें मालूम है एक बार पंचर होगा, 2 बार पंचर होगा, 2 बार पंचर नहीं लगाएंगे, सीधा एक बार ट्यूब चेंज करो, बात खत्म, बैठो और ले जाओ। हाँ, अगर ज्यादा दिक्कत आ जाए, चेन टूट जाए, फिर थोड़ी सी वियर्डनेस वाली फीलिंग होती है कि हाँ, चिंता होती है, बट भगवान की दया से ऐसा आज तक नहीं हुआ है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि भगवान का हाथ हम पे रहेगा और ऐसे हम करते रहेंगे
0: जी। तो अमित जी, साइकिलिंग से जीपीएस 8 तक का सफर, उसके बारे में बताइए किस तरह से ये हुआ?
1: इसमें मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी सिलसिला कहां से शुरू हुआ वो बताना चाहूंगा। 2021 की बात है, जब नवंबर में मैंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, वो भी 24 घंटे के अंदर। उनको कोई खास बीमारी नहीं थी। मम्मी गए, उनका क्रीमेशन किया, नेक्स्ट डे रात, उसी दिन रात को पापा चले गए। ये मेरे लिए बहुत ही भावुक

0: समय था कि मैं अपने आप को पता नहीं रोक नहीं पा रहा था रोने से, बहुत रोया कि दोनों इकट्ठे कहे चले गए। तो जब उनकी किराया थी, हमने इनकी किराया इकट्ठे की एक ही दिन की, तो उससे अगले दिन उनकी 51st एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं इतना अपसेट हो गया था कि मैं घर से निकल ही नहीं पा रहा था। तो दोस्तों ने बोला, यार घर से तो निकल, राइड पे तो आ। तो मेरे दिमाग में आया कि उनकी 51st एनिवर्सरी है, क्यों ना 51 का एक पैटर्न बनाया जाए, एक आर्ट करी जाए चंडीगढ़ की रोड्स पे, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं की थी। वो मेरी पहली अकेले की पैटर्न राइड थी जो मैंने की, और उसको करने के बाद मुझे ये लगा कि मेरे माँ बाप आसमान से अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर गिर रहे हैं, और ये इसीलिए है। और मैं उस पैटर्न राइड्स को, उन आर्ट को चलाता रहा, और आज तक मैं 500 से ज्यादा पैटर्न राइड्स कर चुका हूँ।
1: हुआ क्या था आपके पेरेंट्स को?
0: मेरे पेरेंट्स को कुछ खास नहीं था, मदर को सिर्फ वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी एक दिन पहले, फादर को पैरालिसिस था 17 साल से, बट वो एक साइड का था और वो मैनेजेबल था, वो अपने काम खुद कर लेते थे, ऐसी कोई उनको दिक्कत नहीं थी। मदर को जब वॉमिटिंग हुई वो थोड़ी सवेर हो गई थी, हम उनको हॉस्पिटल ले गए, नेक्स्ट डे वापस लेके आए, दोपहर को उनको वापस लेके आए, इंजेक्शन लगे थे उनको, शाम को अनफॉर्चुनेटली वो मेरा हाथ उनके हाथ में था जब वो हमें छोड़ के चले गए, और मेरे को पता भी नहीं चला, मैं रियलाइज भी नहीं कर पाया कि मेरा हाथ उनके हाथ में और वो चले गए। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो खत्म कर गया मेरे को। बस नेक्स्ट डे की एक बात बताना चाहता हूँ, जब मम्मा का क्रीमेशन करके आए, फादर ने उस दिन सारे काम अपने आप किए, ऐसा कभी नहीं हुआ था आज तक 17 सालों में, उन्होंने खुद अपने आप किए, और रात को वो भी ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक हार्ट अटैक से उनकी भी डेथ हो गई, और आई वॉज टोटली अपसेट, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था।
1: जीवन साथी के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए, उनमें प्यार ही इतना ज्यादा था दोनों में कि हम देखते थे, फादर एक रूम में होते थे कई बार, मम्मी दूसरे रूम में, तो पापा बोलते थे जा देख के आ, मम्मी ने चाय पी, उधर मम्मी कहते थे जा देख के आ, पापा ने खाना खाया। बस यही सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि, और मैं कुछ
1: जी
0: नहीं बोल पाऊंगा।
1: आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं अमित जी। अगर पैटर्न राइडर की बात करें तो विस्तार पूर्वक हमारे सुनने वालों को बताएं कि दरअसल इसके मायने क्या हैं, और या यूं कहें कि जीपीएस जो आर्ट है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये क्या है और किस तरह से आप साइकिल के जरिए ये पैटर्न बनाते हैं।
0: जी ये मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं आप वीडियोस बनाएं, मैंने आज तक किया नहीं, और आपके माध्यम से पहली बार लोगों को बताने जा रहा हूं कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लोग सड़कों को दूरी नापने के लिए साइकिल चलाते हैं।
1: जी
0: मैंने इसको कैनवस बना दिया अपना, मैंने साइकिल को ब्रश बना दिया, मेरा ब्रश इस कैनवस पे चलता है और आर्ट बना जाता है। मैंने बहुत स्टडी की, मैंने अपने चंडीगढ़ का मैप का स्क्रीनशॉट लिया, कुछ भी बनाना होता था सबसे पहले डिसाइड करता था करना क्या, मीन्स किसी का बर्थडे है उसका नाम क्या है तो वो लिखूंगा कैसे लिखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है चंडीगढ़ एक ग्रिड डिजाइन में है, तो इसका एक एडवांटेज मेरे को मिला। और उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट पे सपोज किसी का नाम लिखना है या गॉड इज वन लिखा था मैंने, तो वो जी कैसे लिखना है। अब जी लिखने के काफी तरीके हैं। अब होता क्या है कि लोग बोलते हैं आप ओ लिख रहे हो, अब ओ रेक्टेंगल में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल सेक्टर्स हैं। तो मैंने उसको ओ को गोल बनाने की कोशिश की, कैसे की मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं एक चौक तक पहुंचता था, उससे 200 मीटर पहले अपनी राइड को पॉज कर देता था, फिर आगे जाके लेफ्ट लेके फिर 200 मीटर पे उसको रिज्यूम करता था। अब इससे होता क्या था, वो एक लाइन डायगनली लग जाती थी, क्योंकि जहां पे आपने पॉज किया है फिर जाके आपने रिज्यूम किया है वो सीधी लाइन नहीं जाएगी, वो डायगनल लाइन बना देगा। तो इससे क्या होता था कि ये एक गोलाकार शेप ले लेता था। तो ये एक इसका मेन फंडा ये है कि अगर आपने कोई गोला शेप में कुछ करना है तो पॉज रिज्यूम आपको करना पड़ेगा, इसी के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट करनी है पैटर्न राइड तो कोई एक लेटर से स्टार्ट कीजिए, ए से शुरू कीजिए, बी से शुरू कीजिए, धीरे धीरे धीरे आप बहुत कुछ कर लेंगे।
1: जी अमित जी, आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आपकी साइकिलिंग के बारे में और पैटर्न राइड के बारे में। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: अब ये गीत के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में जब सर कोकिला हमारी लता मंगेशकर जी की डेथ हुई, तो ऑब्वियसली मैं उनको बचपन से सुनता आ रहा हूँ और बहुत बड़ा फैन था उनका, तो मैंने उनके लिए एक पैटर्न बनाया था RIP लता जी। वो 60 किलोमीटर्स की राइड थी, उसके लिए उसी पैटर्न के साथ मैंने उनको ट्रिब्यूट पे की थी। और उन्हीं का एक गाना है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना तुम समझ सको ना हम। जैसे जिंदगी है ये अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई इसके बारे में जान नहीं सका और ना जान पाएगा, उसी को रिवील करता है गाना, अजीब दास्तां है ये।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई में हमारी जिंदगी की जो दास्तां है वो बहुत ही अजीब है, कोई समझ नहीं पाया है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं पैट्रन राइडर साइक्लिस्ट श्री अमित शर्मा। अमित जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि आपने किस तरह से पैटर्न बनाने शुरू किए, तो आज तक आप किस तरह के पैटर्न बना रहे हैं, या पैटर्न राइडर बनने का सफर किस तरह से शुरू हुआ आपका?
1: पैटर्न राइडर का सफर जो शुरू हुआ वो तो जैसे मैंने आपको बताया पहले के 2021 में पेरेंट्स के बाद मैंने पहली पैटर्न राइड की थी, बट उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी राइड्स करूंगा। फिर मैं धीरे धीरे एक एक एक एक करता रहा और लोग मेरे को पैटर्न राइडर बुलाते रहे। वो स्ट्रावा आर्ट को पैटर्न्स बोलते थे, तो दे कॉल्ड मी एज अ पैटर्न राइडर। 100 पैटर्न राइड्स हुई मेरी, तो उसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कॉन्टैक्ट किया मुझे कि आपके आर्ट्स बहुत डिफरेंट हैं, आप बहुत अलग तरह की साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपका रिकॉर्ड ये हमारे रिकॉर्ड में आए। तो उनके लिए फिर मैंने एक राइड की थी स्पेशल, उसका वीडियो बना था, उसके बाद मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया था। ये मेरी कहानी है पैटर्न राइडर बनने की।
0: जी, स्वतंत्रता दिवस पर आपने भारत के नक्शे को सलाम किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: स्वतंत्रता दिवस सबके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, हम भारतीयों के लिए। तो मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत से पैटर्न राइड्स किए हैं, इंडिया का झंडा भी पूरा बनाया है, उसमें अशोका चक्र भी पूरा पैटर्न राइड्स में इंक्लूड किए मैंने। अब इंडिया का जो मैप है वो मेरे को ये लगता था कि चंडीगढ़ में इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो मैप जैसे वो घुमावदार है वो चंडीगढ़ की ग्रिड सेक्शन में नहीं बन सकता, मेरे को ये लगता था। मैंने 2 साल लगे इसको प्रेप किया, ये नहीं कि मैं पूरा दिन लगा रहता था, कभी आधा घंटा, कभी एक दिन छोड़ के आधा घंटा, और फिर हमेशा मैं सोचता था नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर मैंने एक पैटर्न बनाया आई एम पॉसिबल पूरा हुआ। फिर मैंने कहा यार, जब मैंने आई एम पॉसिबल लिखी दी है तो इंडिया का पैटर्न क्यों नहीं बनेगा। एक साल गुजर चुका था, फिर

0: मैंने ट्राई किया, मैं कहा दोबारा मैं ट्राई करता हूँ कि ये पहले रूट तैयार करूँ इसका, फिर देखता हूँ क्या होगा। और फिर एक साल लगा पूरा मेरे को रूट तैयार करने में। और रूट तैयार करने के बाद जब मैंने राइड शुरू की, मैं सही बोलता हूँ कि मेरे को भी विश्वास नहीं था कि ये बन जाएगा। और मैं किन किन रोड्स पे गया हूँ, सारे साइक्लिस्ट जानते हैं जिनको पैटर्न राइड्स का पता है, उनको मालूम है ये कैसे बना होगा। इतना मुश्किल था कि मैं खुद नहीं जान पा रहा था कि यार ये एंड में होगा कि नहीं होगा। 3 दिन लगे, कुत्ते भी पीछे पड़े, कुछ ऐसी गलियों से मेरे को साइकिल उठा के भी जानी पड़ी, कुछ गलियों से मेरे को भागना भी पड़ा, कई ग्राउंड्स में मेरे को पैदल भी चलना पड़ा। तो हर जगह साइकिल नहीं जा सकती, इसलिए ये पैटर्न बहुत खास है और देश के लिए बना हो ये गर्व की बात है।
1: जी बिल्कुल, अपने देश के लिए हम कुछ भी करें वो गर्व की बात है। और जिस तरह से आपने बताया कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कितनी मुश्किलों का सामना करके आपने भारत के नक्शे को सलाम किया स्वतंत्रता दिवस पर, तो जब आप पैटर्न बनाते हैं या अपने मन में सोचते हैं तो किस तरह की तैयारी करते हैं, ताकि जिस तरह से आपने बताया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आई आपने लेकिन वो पैटर्न बना के सांस ली, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप सड़क को कैनवस बना देते हैं और साइकिल को ब्रश बना के आप चलते हैं, तो आप बताइए कि किस तरह से आप तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं?
0: इसकी तैयारी तो पहले डिसीजन से होती है कि आपने सोचा क्या, उसके बाद उसका रूट तैयार करना, उसके स्क्रीनशॉट पे जो जहां पे जिस चीज को आप कवर करना चाहते हैं वहां पे आपने रूट तैयार करना है उसका। रूट तैयार करने के बाद बस दिमाग में वो रूट रखना है, फिर कुछ नहीं सोचना, फिर निकल जाना है, जो मर्जी हो, अच्छा बने ना बने। मैंने आज तक कभी भी पैटर्न राइड्स की रिहर्सल नहीं की है, एक बार ही निकला हूं और भगवान की दया से और माता पिता के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया पैटर्न्स बने हैं और मैं बहुत खुश होता हूं। बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं काफी बार इरिटेट हो जाता हूं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से 100 मीटर जा रहा हूं फिर 100 मीटर वापस आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बट जब वो आर्ट तैयार होती है, आप मानिए कि मैं कितना खुश होता हूं कि मैंने कुछ किया है, कुछ अवेयरनेस की है, कुछ अपने देश के लिए किया है, तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी तो अमित जी, आपने अपनी रचनात्मक साइकिलिंग को केवल राष्ट्रीय विषयों तक ही सीमित नहीं रखा, आपने हमारे जो त्योहार हैं, हमारी संस्कृति है, उन अवसरों को भी आपने जीपीएस आर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये कि जैसे हमारे त्योहार आते हैं तो त्योहारों में कैसे विश करना, अब आपने देखा होगा लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं त्योहारों का विश करने के लिए। मेरा जो आइडिया है वो कुछ अलग है। जैसे दीपावली आती है, धनतेरस आया, तो उसमें क्या सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है, सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है शुभ लाभ। तो चलो यार शुभ लाभ बनाते हैं आज, हालांकि टाइम लगेगा उसको, बट वो लिख के और वो वही मैसेज, वो आर्ट दूसरों को दिखा के वो विश करने का मजा ही अलग है। ऐसे विश किया जाए हर त्योहार, ओनम है ओनम पे करता हूँ, लोहड़ी है लोहड़ी पे करता हूँ, चाहे अब लोहड़ी पंजाब में ज्यादा मनाई जाती है तो उसको हैप्पी लोहड़ी पंजाबी में। मिस लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, कौन सी चीज कहाँ पे होती है उसका भी ध्यान रखना है, तो इसी के बेस पे मेरे पैटर्न राइट्स चलती है।
1: जी अमित जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर आपकी पसंद का एक और गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो इस बार कौन सा गीत सुनवाएं?
0: ये गीत भी मैं अपने पैटर्न राइड से ही प्रेरित है, मेरा एक पैटर्न था नेवर गिव अप, तो ये गीत

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं पैटर्न राइडर साइकिलिस्ट श्री अमित शर्मा। अमित जी, आपने जिस तरह से बताया कि अलग अलग पैटर्न्स के द्वारा आप किस तरह से अपने देश के लिए हमारे सांस्कृतिक विरासत को भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सामाजिक जागरूकता के लिए आपने कौन कौन से पैटर्न बनाए हैं अपने साइकिल से?
1: सामाजिक जागरूकता के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मैंने एक पैटर्न बनाया था जिसमें एक घर और उसके अंदर साइकिल, वो मेरा एक मैसेज था कि हर घर में एक साइकिल होनी जरूरी है। एक पेड़ बनाया, एक साइकिल, प्लांट अ ट्री राइड अ बाइक। हमें पॉल्यूशन से निजात पानी है, और वो कैसे पाएंगे? गाड़ियों से तो नहीं पाएंगे। साइकिल से कोई एक काम दिन का जो आप गाड़ी से कर रहे हैं वो साइकिल से कीजिए, नहीं साइकिल से करना पैदल कीजिए। 1-2 किलोमीटर का रास्ता है वो साइकिल से नापिए, गाड़ियों से नहीं नापिए, तभी कोई पोल्यूशन का निजात हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा और ऐसे ही चलना पड़ेगा। सेव अर्थ, प्लांट ट्रीज, राइड बाइक, ये मेरे कुछ पैटर्न्स हैं जो ये मैसेज देते हैं सोसाइटी के लिए। और अभी रिसेंटली एक सेव रिवर्स का आ रहा है, डे आता है सितंबर में, तो आई एम प्लानिंग कि मैं उसके लिए भी एक पैटर्न बनाऊं। हमारी नदियां बहुत गंदी हो चुकी हैं, इनको साफ रखना बहुत जरूरी है, तो ये भी एक पैटर्न अभी बहुत जल्दी आने वाला है।
0: नदियों के ऊपर जो आप पैटर्न बनाएंगे उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है?
1: नदियों के ऊपर अभी जो रिवर्स डे आने वाला है, लास्ट संडे को आता है सितंबर के, एक फाउंडेशन है दे, वो मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि अगर हम कुछ ऐसा कर सके, मैसेज ऐसे दे सकें, तो मेरे भी दिमाग में आया कि वाकई में हमें एक मैसेज देना चाहिए लोगों को कि नदियों में हम जो गंद डाल रहे हैं, नदियों को हम ये ऐसे ना यूज करें, तो ये ज्यादा बेटर होगा। अभी मैं सोच रहा हूं, क्योंकि बहुत से वर्ड्स मेरे को इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा कि मैसेज क्या देना है जो कि एक इम्पैक्ट हो लोगों पे और लोग समझ पाए कि हाँ, हमें नदियों को बचाना ही पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, नदियों को बचाना पड़ेगा, अपनी कुदरत के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबको अपने अपने लेवल पर काम करना है। और आप अपने साइकिल से पैटर्न बनाकर ये संदेश दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप जैसी शख्सियत आज आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में है।
1: एक और स्पेशल साइकिलिंग आर्ट थी जो मैंने बनाई थी कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए। एक कैन किड सोसाइटी है जो कि छोटे बच्चों के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत आगे आई है और वो रखते हैं। जैसे ही मेरे को पता चला तो मैंने कैंसर लिखा और साथ में कैन किड्स लिखा, ताकि वो चीज अपनी साइकिलिंग आर्ट के थ्रू दिखा सकूं, और वो बच्चे बहुत खुश हुए। और मैं अपने बर्थडे भी कई बार उनके साथ मनाता हूं, और जिससे वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खुशियां बिखेरना।
0: जी
1: कुछ और चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारे मिल्खा सिंह, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे और मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है वो, तो मैंने उनके लिए एक साइकिलिंग आर्ट तैयार की थी, द फ्लाइंग सिख। और फ्लाइंग सिख ये 60 किलोमीटर की राइड थी। मैं पहले ही 20 किलोमीटर के अंदर गिर गया और चोट लग गई मेरे को, बट फिर मैं उठा, मैंने कहा घर क्यों जाना है यार, दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा और पूरा करूंगा। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं घर पहुंचा और वाइफ को बोला कि यार दवाई देना, तो वो बोलती दवाई क्यों? मैंने कहा यार जिस शरीर में मैं हूं वो गिर गया, उसको चोट लग गई है, तो वो कहते आप पागल हो गए। मैं कहा हम पागल ही हैं। और एक और साइकिलिंग आर्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो थी जो हर बंदा भूल जाता है भाई, वो क्या है? मैरिज एनिवर्सरी। हर आदमी ये चीज भूल जाता है, मेरे को पता है, और मैं भी भूल जाता था। एक भूला, दूसरा भूला, तो नेक्स्ट डे वाइफ थोड़ा गुस्से में, तो एक साल मैंने क्या किया कि वाइफ को बिना बताए, बिना उसको विश किए, मैं घर से साइकिल लेके निकल गया। पूरे चंडीगढ़ में मैंने हार्ट शेप बनाई, दिल की शेप के अंदर उसका और मेरा जो नाम के इनिशियल्स थे वो लिखे, और घर जाके उसको दिखाया कि देख मुझे याद है, एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत अच्छा लगा।
0: जी अमित जी, जो आप पैटर्न बनाते हैं, एक आम व्यक्ति किस तरह से उसको देख सकता है आपके पैटर्न्स को?
1: ये जो मेरे पैटर्न राइड्स है, सबसे पहले तो ये एक मैसेज है जो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू वो देख सकते हैं। हाँ, मेरा एक मैसेज है, आप साइकिल कीजिए और मुझसे जुड़िए, ताकि आपको ये पता चले पैटर्न राइड्स कैसी होती हैं। अगर मैं आज मैसेज दे रहा हूँ, कल को आप भी मैसेज दे सकते हैं। मेरे को अपने आप पे बहुत गर्व है कि मैं मैसेज दे पा रहा हूँ सोसाइटी को अपने पैटर्न राइट्स के थ्रू। अहंकार कोई नहीं है, मैं चाहता हूं आप लोग जुड़े आए। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपके पास कुछ है, तो जरूर मुझे ज्वाइन करें, कभी मेरी पैटर्न राइड्स में आए और सीखें ये कैसे होती है और कितनी मुश्किल है।
0: जी तो आज क्योंकि बहुत से सुनने वाले हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप

0: हमारे सुनने वालों को साइकिलिंग के बारे में, पैटर्न राइड के बारे में, जीपीएस आर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी आगे चलकर जो पैटर्न राइडर बनना चाहते हैं वो एक सफल पैटर्न राइडर बन पाए।
1: बिल्कुल, कुछ समय के बाद फिटनेस और उसके बाद मैंने पैटर्न राइड्स के बारे में सोचा। फिटनेस बहुत जरूरी है, आप कोई भी वर्कआउट करें, चाहे वो आप दौड़ हो चाहे वो साइकिलिंग हो। फिटनेस के साथ साथ मैंने ये साइकिलिंग आर्ट जो अपने साथ जुड़ी है वो एक अलग ही मुकाम पे मेरे को लेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको जो मेरे पैटर्न राइड्स को अप्रिशिएट करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी घर से, सबसे पहले तो घर से निकलें, साइकिल लेके निकलें, कहीं जाना है आप एंजॉय करें, वेदर को एंजॉय करें। चंडीगढ़ में बहुत अच्छी जगहें हैं, आसपास बहुत नेचर है, नेचर को एंजॉय करें। बस सबसे बड़ी बात यह है कि घर से निकलना पड़ेगा, कुछ पाना है तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा, नींद खोनी पड़ेगी।
0: जी बिल्कुल, वो जुनून होना चाहिए कुछ करने का, वो मन में आशा हो ताकि आप मंजिल को हासिल कर पाएं। और आप बखूबी वो करके दिखा रहे हैं, चाहे मुश्किलें या चुनौतियां हजार आपके रास्ते में आती हैं।
1: जी चुनौतियां वाकई में कई बार बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जब मैं पैटर्न राइड करता करता लेट हो जाता हूँ, सुबह 8 बज जाते हैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, उस टाइम हम नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मेरे को वो खत्म करनी होती है उस दिन, क्योंकि पैटर्न राइड अगर मैं खत्म नहीं कर पाया तो मेरे को वहीं पे पॉज करना है, अपना पूरा दिन निकालना है, ऑफिस जाना है, फिर नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट करना है जहां पे मैंने पॉज किया था, तो जो कि बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करता हूं कि अर्ली मॉर्निंग कर सकूं ताकि मेरे को ट्रैफिक इतना ना मिले। और ऐसे ही मेरी पैटर्न राइड्स चलती रहे, नए नए पैटर्न्स मैं लाता रहूंगा, सोचता रहूंगा, अवेयरनेस मैं फैलाता रहूंगा। और सड़कें मेरी कैनवस बनी हुई है, साइकिल मेरा ब्रश बना हुआ है, यही मेरा प्यार है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा सब कुछ है।
0: आपने बताया कि आप सुबह जल्दी पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रैफिक ज्यादा ना हो, तो सुबह कितने बजे आप शुरू करते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी नींद पूरी करनी है। ये मत करना कि नींद पूरी ना हो और आप निकल गए। सुबह अगर मैंने 6-7 घंटे की नींद ले ली है तो मैं सुबह 4 बजे हूँ, 5 बजे हूँ, मैं घर से निकल जाता हूँ। साइकिल पे लाइट्स बहुत जरूरी है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात का टाइम होता है और व्हीकल्स को नहीं पता चलता, ध्यान रखिए इस चीज का। 4 बजे 5 बजे और वर्कआउट, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। साइकिलिंग करने से पहले वार्म अप होना बहुत जरूरी है, बाद में कूल डाउन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इंजरी कर लोगे मसल को, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। और बस सुबह निकलें और एंजॉय करें।
0: जी अमित जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपने पैटर्न राइड के बारे में और जीपीएस आर्ट के बारे में और अपनी साइकिलिंग के सफर के बारे में हमारे साथ, हमारे सुनने वालों के साथ जो तमाम बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अप्रिशिएट करते हैं। और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को दोबारा से मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस घर से निकलिए भाई, एंजॉय कीजिए।
0: दोस्तों, आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे हम सफर थे पैटर्न राइडर और साइकिलिस्ट श्री अमित शर्मा। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रेम सिंह ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमन भगत। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।

0: भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
2: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाया। कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक या पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी धन्यवाद दीपेंद्र।
0: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
5: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
4: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
5: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
4: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
5: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
4: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
5: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक प्रतिनिधित्व वाले और समावेशी शासन व्यवस्था पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारत द्वारा ब्रिक्स की मेजबानी किया जाना देश के लिए गर्व की बात है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार में बदलाव लाने के लिए एआई का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मजबूत वित्तीय तंत्र तैयार करने पर जोर दिया।

0: शासक गुलाब चंद कटारिया ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार में बदलाव लाने के लिए एआई का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मजबूत वित्तीय तंत्र तैयार करने पर जोर दिया। और हरियाणा रक्तदान के क्षेत्र में लगातार तीसरे वर्ष देश में अग्रणी राज्य बना। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है। इससे पहले भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अधिक प्रतिनिधित्व वाली और समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। श्री मोदी ने वैश्विक शासन के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना का प्रस्ताव रखा और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब और टाला नहीं जा सकता।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत द्वारा ब्रिक्स की मेजबानी किया जाना देश के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री आज सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने गांव कुताबगढ़ जाकर राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले सैनिक सुखचैन सिंह को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के नेतृत्व की सराहना हो रही है।
2: ये देश के लिए गर्व की बात है कि भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में नए नए आयामों को छू रहा है। ब्रिक्स की जो बैठक है आज भारत में, उसको मेजबानी करने का मौका मिला है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।
0: उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। आज की बैठक में 13 शिकायतों का निपटान किया गया है, जबकि 3 शिकायतों को जाँच होने तक स्थगित रखा गया है।
2: अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के है, कोई रास्ते को लेकर के है, कोई अपने पारिवारिक झगड़ा है उसको लेकर के है, उनका मौके पर ही समाधान किया। सरदार सुखचैन सिंह जी के मैं परिवार में गया था, उनको नमन करके आया हूँ। देश की सेवा करते हुए मृत्यु लोग को प्राप्त हुए है। मैंने परिवार को बैठ करके उन्होंने जो मांगे भी कही है उनको लिया है। डीसी महोदय को कहा है कि इनको एक बार आप चेक करें, वेरीफाई करें।
0: एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार में बदलाव लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। चंडीगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च शिक्षा विषय पर आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि एआई क्रांति ने लोगों को सीखने, काम करने, शोध करने और निर्णय लेने के तरीकों को बदल दिया है। तकनीक का उपयोग मानव केंद्रित, नैतिक, समावेशी और समाज के प्रति जिम्मेदार

0: मजेदार तरीके से होना चाहिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से कहा कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के विषय के अलावा चिकित्सा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी AI की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, शासन व्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए AI आधारित समाधान विकसित किए जाने चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति को देखते हुए स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एक मजबूत वित्तीय तंत्र तैयार करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री 2000 करोड़ रुपए के कोष के साथ हरियाणा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स की सफलता में समय पर पूंजी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हरियाणा स्टार्टअप फंड्स ऑफ फंड्स की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। हरियाणा रक्तदान के क्षेत्र में लगातार तीसरे वर्ष देश में अग्रणी राज्य बना है। हरियाणा में 5,79,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और 8,189 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ई रक्तकोश पोर्टल पर दर्ज सत्यापित वार्षिक रक्तदान आंकड़ों के आधार पर प्रति 10 लाख आबादी पर रक्तदान के मामले में हरियाणा सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत सरकार द्वारा हरियाणा को 1 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कुरुक्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों से बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, सभी के सहयोग से अब यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ है।
1: लगभग 37 दिन हमारे स्वच्छता कर्मी साथी हड़ताल पर थे। लंबा प्रयास सरकार का भी चल रहा था, समाज का भी चल रहा था, हमारे संतों का भी चल रहा था और भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से कल वो एक बहुत बड़ा आंदोलन समाप्त हुआ। विपुल गोयल जी जो हमारे निकाय मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सौम्य तरीके से प्रयास किया। मैं आप सभी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभारी हूं, जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने स्वच्छता कर्मी परिवार के साथियों की सभी मांगों को मानकर सभी अधिकारियों को उन पर उचित निर्णय करने के लिए दिशा निर्देश दिए।
0: मंत्री ने कहा कि आने वाले त्योहारों के सीजन में सफाई कर्मचारियों और स्वच्छता सैनिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सफाई कर्मचारी एक बार फिर से सफाई व्यवस्था को लाने का काम करेंगे और प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए योगदान देंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने आज बबैन के गांव गूढ़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क का शुभारंभ किया। M3M फाउंडेशन संस्थान द्वारा दान की गई इस मशीन से गुड़ा प्राथमिक केंद्र सहित आसपास के 24 गांव के नागरिकों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इससे पहले जांच के लिए नमूने लाढ़वा अस्पताल में भेजे जाते थे, पर अब 70 से ज्यादा प्रकार के टेस्ट इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हुआ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक प्रतिनिधित्व वाले और समावेशी शासन व्यवस्था पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारत द्वारा ब्रिक्स की मेजबानी किया जाना देश के लिए गर्व की बात है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार में बदलाव लाने के लिए AI का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मजबूत वित्तीय तंत्र तैयार करने पर जोर दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित

0: किया जा रहा है। हमारे आंगनवाड़ी हमारे जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपने नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे शुरू होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटनी समागम में संबोधन करदे कहा कि भारत की ब्रिक्स प्रधानगी लोक केंद्रित पहुंच से आधारित है। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज यूनिवर्सिटियों के उप कुलपतियों को उच्च शिक्षा खोज ते नवीनता विच तब्दीली लियाउण लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों करन दा सद्दा दित्ता है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग नाल 9 होर अजिहे अपराधियों नूं देश वापस लियाउण दी प्रक्रिया शुरू की है, जो विदेशों तों पंजाब विच अपराधिक कार्रवाइयां चला रहे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब अज पूरी धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। भारत दक्षिणी कोरिया नूं 5-1 नाल हरा के महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूरनामेंट के फाइनल च पहुंच गया है। भारत की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जारी है। सम्मेलन के उद्घाटनी सैशन में संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने पिछले 20 सालों में विश्व पद्धर से अपनी एक वक्री पछाण बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स प्रधानगी लोक केंद्रित पहुंच से आधारित है, जो मनुखता को पहल दिंदी है। उन्होंने ब्रिक्स सहयोग को सीधे तौर पर आम लोगों नाल जोड़न पर विशेष जोर दिया।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है, उन्होंने वधेरे प्रतिनिधता वाली और समावेशी विश्व शासन प्रणाली की लोड़ पर जोर दिया। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज यूनिवर्सिटियों के उप कुलपतियों को उच्च शिक्षा खोज और नवीनता में तब्दीली लियाउण लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों करन दा सद्दा दिता है। उन्होंने यह यकीनी बनाने पर जोर दिया कि एक टेक्नोलॉजी मनुख केंद्रित नैतिक समावेशी और समाजिक तौर पर जिम्मेवार बनी रहे। पंजाब लोक भवन विखे आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और उच्च सिक्ख्या विषय के उप कुलपतियों की कानफ्रेंस में संबोधन करदे श्री कटारिया ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस क्रांति लोगों के सीखण, काम करन, खोज करन और फैसले लैण के तरीकों को बदल रही है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस को एक अजिही परिवर्तनकारी शक्ति वजों दर्शाया, जो आने वाले दहाकों में भारत की आर्थिकता और समाज को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती है। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटियों को आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस को सिर्फ इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के विषय वजों ही नहीं देखना चाहिए, सगों दवाई, खेतीबाड़ी, कानून, वित्त, भाषावां, समाजिक विज्ञान और होर खेतरों में भी एआई सिक्ख्या को उत्साहित करना चाहिए है। उन्होंने संस्थावों को खेतीबाड़ी, सेहत संभाल, पानी की संभाल, शासन और वातावरण चुनौतियों लिए आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस आधारित हल विकसित करने का सद्दा दिया। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां अथार्टी के निर्देशों अनुसार अज पंजाब भर में लोक अदालतां लाईआं गईआं। इन्हां लोक अदालतों दौरान राजीनामा, योग फौजदारी केस, चैक बाउंस केस, बैंक रिकवरी, विवारिक झगड़े, सरकारी विभागों नाल संबंधित मामले ते हर तरह के दीवानी केस विचारे ते निपटाए गए। अजिहे केस जो अजे किसी भी अदालत विच दायर नहीं किए गए अते उपरोक्त श्रेणियां अधीन हुंदे ने, उह वी लोक अदालत विच ने टारे लियांदे गए। सूबे भर के जिलों में यह अदालतां जिला ते सैशन जज की अगवाई में लाईआं गईआं। यह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, ते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 9 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 21 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तकदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: आप सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारे जीवन में दुख का बहुत बड़ा हाथ होता है खुशियाँ महसूस करवाने के लिए। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के बिना एक दूसरे का कोई महत्व नहीं रहता। इसी बात पे मैं एक मशहूर शायर की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। चमन में तिलाते रंगों बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनका जो दुख है वो तो मैं किसी भी तरह से बयां नहीं कर सकता, पर उन्होंने अपने दुख में होने के बावजूद दूसरों की खुशियों के जो बारे में जो सोचा, उसकी मैं तहे दिल से सराहना करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ सुमन लता जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि गुरुग्राम की रहने वाली हैं और एक शिक्षक हैं। इनकी 8 साल की बच्ची की 2019 में ब्रेन डेथ हो गई थी और इस घटना के बाद इन्होंने उसके ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया। तो आइए सुमन लता जी से ही बात करते हैं और जानते हैं उनकी ये प्रेरणास्पद कहानी। सुमन लता जी, मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। सुमन जी, हम जानते हैं कि ये दुख ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप और आप ही जान सकती हैं और शायद हम इसकी गहराई को ना समझ पाए, बट आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या हुआ था, शुरू से बताइए।
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। 2019 की बात है, अगस्त 2019, मेरी बेटी को कुछ बुखार हुआ था, नॉर्मली बुखार हुआ था। उसके बाद जब हमने उनको एडमिट कराया ठीक करने के लिए, तो उस समय पर हमें 3 दिन के बाद पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए के कारण उनके ऑर्गन्स हैं वो खराब होते चले गए और डॉक्टर ने भी लास्ट में जवाब दे दिया। और जवाब देने के बाद हम बहुत ही दुखी थे, क्योंकि हमें पहले ही मालूम हो चुका था कि हमारी बेटी नहीं रही। उसके बाद बहुत दुखी हुए, लेकिन जिस डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में जो है माई को रखा गया था, उस समय पर उन्होंने हमें जो है नोटा जो संगठन है उनसे बातचीत करने के लिए कहा कि भाई जो है आप बात करें और इससे किसी और को खुशी मिल सकती है। तो हमारे अंदर इतना दुख था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हमारा बच्चा तो चला गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी और को खुशी मिलती है तो हम सोचेंगे थोड़े से ही समय।
1: कितने साल की थी माही और कैसा नेचर था माही का, क्या करती थी, कौन सी क्लास में पढ़ती
2: थी? 8 साल की थी और नेचर बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा दूसरों से प्यार करती थी, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहती थी, हमेशा बड़े बड़े पदों के बारे में बात करती थी कि मुझे IPS बनना है और जो है बड़े बड़े अधिकारी बनना है। हमेशा दूसरों से प्यार करती थी, खेल में भी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी।
1: आपकी एक ही लड़की थी या और भी बच्चे हैं आपके?
2: एक बेटा और है जो उससे बड़ा है
1: जी। और आप शिक्षक हैं तो आप क्या पढ़ाती हैं?
2: मैं हिंदी शिक्षिका हूँ।
1: और माही के पापा क्या करते हैं?
2: माही के पापा दिल्ली पुलिस में हैं
1: जी। आपने बताया कि अगस्त 2019 की बात थी, कौन से हॉस्पिटल में ये चीज हुई थी?
2: ये आकाश हॉस्पिटल है द्वारका।
1: आकाश हॉस्पिटल द्वारका में जब आपने नोटो से बात की तो नोटो के अधिकारियों ने फिर आपको ऑर्गन बताया?
2: उस समय वो हमेशा यही बोलती थी कि मुझे कोई बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है। तो उसके बाद हमें लगा कि अब तो वो चली गई।

0: है, अगर हम कोई ये फैसला लेते हैं तो उससे हो सकता है कि उसका कोई बड़ा काम हो जाए।
1: तो जब आपने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, उसके कितने दिन बाद ये अंगदान हुआ उसका?
0: पहले हमने नजफगढ़ जो है हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया 2-3 दिन, तब तक वो बिल्कुल ठीक थी, बुखार भी उतर चुका था, लेकिन उसके बाद जब वो है कुछ और अधिक जो है वो बीमार लगने लगी तो हमने उसको जो है आकाश हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, यही के हॉस्पिटल को वहाँ रेफर कर दिया था। उसके वहाँ 3 दिन रहने के बाद जो है हमने ऑर्गन देने का फैसला किया, हमने और भी ऑर्गन देने का फैसला किया था, जैसे आंखें हैं, जो भी सामान बचा हुआ था जैसे भी देने के लिए, लेकिन फिर जो है हार्ट के लिए ही बस जो है हमें पता चला कि भाई जो है दिल की ही जरूरत है, इसलिए हमने दिल का दान कर दिया।
1: तो आपने इससे पहले कभी अंगदान के बारे में सुना था मंजी?
0: हाँ जी, बहुत बार सुना है, बहुत बार बच्चों को मोटिवेट भी किया है, तो हम भी इस बात से जब हमें डॉक्टर ने सलाह दी तो हम भी इस बात से सहमत हो गए थे कि भाई ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी वजह से किसी और को खुशी मिल रही है।
1: सुमन जी, जैसे कि आपने बताया कि जब आपने पहले भी सुन रखा था अंगदान के बारे में और आप इससे सहमत भी थे, और जब आपसे बात की गई, आपके सामने ये सिचुएशन आई, तो आप बहुत जल्दी आपने ये फैसला कर लिया कि हाँ हम ये चीज करना चाहेंगे, बट जब डॉक्टर ने आपको बताया होगा ब्रेन डेथ के बारे में, तो अंगदान के बारे में तो आपने सुना ही था, लेकिन ब्रेन डेथ के बारे में आपने इससे पहले, या मस्तिष्क मृत्यु हम हिंदी में कहते हैं, मस्तिष्क मृत्यु के बारे में आपने इससे पहले कभी सुना था अंगदान से पहले?
0: नहीं सर, इससे पहले मैंने नहीं सुना था बिल्कुल भी। बाकी जो ऑर्गन उसके जो खराब हो गए थे उसके बारे में डॉक्टर ने कहा था कि भाई इनको तो हम बदल सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन अगर ब्रेन डेड हो जाता तो उसके बाद उसका कोई भी जो है निवारण नहीं है, तो इसलिए जो है हमें पहले ही अंदाजा हो गया था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, और जो है ब्रेन डेड के बारे में मैंने पहली बार ही अपनी बेटी के बारे में सुना।
1: तो आपने फिर इसे एक्सेप्ट किया?
0: हाँ जी, फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया ही, और साथ में ये भी के लिए सोचने के लिए भी मजबूर किया भाई, हो सकता है कि हमारी वजह से किसी को खुशी मिल जाए
1: जी। तो आपने जैसे बताया कि ब्रेन डेथ के बारे में आपने पहली बार सुना यहाँ पर, तो आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? आप तो राजी हो गए थे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे परिवार का प्रेशर, हमारे जो परिवार के और सदस्य हैं वो अगर राजी नहीं होते तो हम वो काम नहीं कर पाते, तो इस टाइम पर आपके परिवार वालों की क्या प्रक्रिया थी?
0: परिवार में सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ही फैसला लिया था, ज्यादा करीब तो माँ के भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा अपने पिता के करीब होती है, नेचुरली होता है, बेटियाँ ज्यादा जो है पिता के करीब ही ज्यादा होती हैं, बड़े होने के साथ साथ ही वो अपने माँ के साथ जो है आती हैं, लेकिन प्यार तो हम दोनों ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ये फैसला है मेरे हस्बैंड ने ही लिया था कि भाई मैं इस प्रकार से करना चाहिए, उन्होंने मुझसे जो है पूछा और मैंने उसको सहमति दे दी थी साथ साथ में ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी पहले ही अपने जो है ऑर्गन डोनेट कर रखे हैं पहले ही
1: जी, उन्होंने प्लेस कर रखा है।
0: हाँ जी,
1: और बाकी के परिवार वाले जैसे लॉज, आपके सास ससुर, दादा दादी, तो बाकी के लोगों का जैसे माई के जो दादा दादी हैं या फिर और जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, वो कई बार पुराने ख्यालों के होते हैं और उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती, उनका क्या रिएक्शन
0: है? सर, और भी हैं जो लोगों ने जो इसका विरोध किया कि भाई इस प्रकार से क्यों आप इसको एक देसी भाषा में बोलते क्यों कटवा के डाल रहे हो बॉडी को, या ऐसे कैसे कर रहे हो आप, तो काफी थोड़ा सा विरोध हुआ था, लेकिन थोड़ा समझाने के बाद वो मान गए थे, ऐसी थी कि उसमें जो है सभी ने एक दूसरे से बात की और मान गए, बड़े लोगों ने भी। हाँ
1: जी, और आपने जैसे बताया कि लोगों ने बोला आपसे कि कटवा की क्यों डाल रहे हो, तो आपने फिर डॉक्टर से बात की थी कि कैसे ये होगा, डॉक्टर ने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम निकाले जाएंगे?
0: एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद भी हमसे भी बहुत अच्छी प्रकार से पूछा था कि अगर आप दिल से चाहते हो तो आप करो, कोई जबरदस्ती नहीं है,
1: कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर, या कोई दबाव
0: प्रेशर नहीं
1: आया गया था
0: किसी भी प्रकार का,
1: कि माही की जो शरीर था वो वापस दिया गया तो वो बहुत अच्छी हालत में था, और
0: बिल्कुल बहुत अच्छी हालत में था। बिल्कुल उन्होंने हमारे सामने ही हॉस्पिटल में ले जाकर के, हम वहीं खड़े हुए थे बिल्कुल बाहर रूम के बाहर, वहीं अंदर उन्होंने जो है पूरी टीम गई थी, और हर्ट के बाद उन्होंने बिल्कुल हमें दिखाया था बच्चे को और अच्छे से हमें वापस किया था।
1: कई बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं कि अरे शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा या फिर अंग भंग हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो वो लोग नहीं करते इस वजह से, सिर्फ इस वजह से डॉक्टर बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, एंड
0: हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही भरोसा दिलाया था बिल्कुल, और जो है हार्ट को ग्रीन कॉरिडोर से ले जाया गया था चेन्नई।
1: अच्छा,
0: और हाँ उस समय पर डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, जितना भी स्टाफ थे उन्होंने बहुत जो है बिल्कुल सहानुभूति के साथ हमारे साथ जो है सही व्यवहार किया था, कोई ऐसी बात नहीं थी, और बच्चे की बॉडी भी बिल्कुल ठीक।
1: कौन कौन से अंगदान हुए थे उसके? सिर्फ हार्ट डोनेट हुआ था या और भी?
0: हमने और भी आंखों के लिए भी किया था, आंखें भी ठीक थी, लेकिन बाद में जो है सिर्फ जब तक

0: इकट्ठा किया गया अस्पतालों में बाकी दूसरे स्टेट वगैरह में, तो उस समय पर बस उन्हें जो हार्ट की ही जरूरत थी और उसके बाद सिर्फ हमने जो हार्ट को ही दान किया था।
1: सुमन जी, आपने बताया कि कई परिवार वाले ने इस चीज का शुरू में विरोध किया था जो कि बाद में सहमत हो गए थे, तो अब 2 साल हो गए हैं इस घटना को, 2 साल बाद आपका परिवार और आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं?
0: इस 2 साल के दौरान सर देखो, जो दुख है वो तो दुख रहा ही, जो हमारा बच्चा है वो तो आखिरी सांस तक रहेगा उसका दुख कि भी हमारा बच्चा वो चला गया। लेकिन इस 2 साल के दौरान जब हम माही का जो दिल था, हार्ट था, उसको चेन्नई के 6 साल के बच्चे को दिया गया, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बातचीत करते हैं तो मन को थोड़ी सी कहीं ना शांति मिल ही जाती है कि भाई हमारी माई है, हमारी बेटी है, वो कहीं ना कहीं दुनिया में जिंदा है। और वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें बहुत अच्छे से जो है उसका जो दिल है वो काम कर रहा है और उसके माँ बाप हैं बहुत आभार करते हैं और बार बार भाई कहते भी हैं कि आपका ही बच्चा है। मन के अंदर थोड़ी सी तो ये रहती ही है कि भाई जो दूसरे को खुशी मिल रही है उससे भी हमें खुशी मिल रही है।
1: तो आप उनसे मिलते हैं जिनको हार्ट मिला था उस बच्चे से?
0: हाँ जी, वो बिल्कुल करते हैं, हमारे पास बातचीत होते, मिलते नहीं है, काफी दूर है, नहीं सकता, लेकिन फोन के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से हम जरूर उनसे बात करते हैं।
1: देखो, आमतौर पर ऐसा नहीं बताया जाता किसको दिया जा रहा है या किसका ऑर्गन दिया गया है।
0: हाँ जी, बिल्कुल नहीं बताया जाता, लेकिन हमने डॉक्टर से इस बारे में बातचीत की थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो देने वाला उसके मन में रहता है, हम भी आम आदमी है कि भाई हमारे मतलब जो बच्चे का जो अंगदान किया जा रहा है उसका सही से प्रयोग होगा या नहीं।
1: जी,
0: उसके बाद हमने डॉक्टर से बातचीत की थी, उन्होंने उसके पिता से, जो लड़के का जो पिता था उससे बात करवाई थी, उसके बाद हम दोनों आपस में, दोनों परिवार आपस में बातचीत करने लग गए। जो है वो बहुत बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बातें करता है बहुत अच्छे से, जो पहले उसकी कंडीशन थी उस कंडीशन में दिन और रात का अंतर है बिल्कुल।
1: अंत में अगर आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हो, अगर आप उन्हें कोई संदेश देना चाहती हो या अपील करना चाहती हो?
0: बिल्कुल अपील करूंगी सर, क्योंकि कई बार मैं ये नहीं चाहती कि किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हमें अंग दान करने से बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है किसी दूसरे को खुशी मिलती है और दूसरे को खुशी देना ही जो है सबसे बड़ा परोपकार माना जाता है। तो मैं चाहूंगी सभी से निवेदन करना कि भाई जो है अंग दान जरूर करें, क्योंकि इससे किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी को खुशी मिल सकती है।
1: धन्यवाद सुमन लता जी, आप हमारे साथ, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और हमारे साथ आई इस मंच पर ताकि लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया जा सके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गन इंडिया की तरफ से।
0: धन्यवाद सर।
1: दोस्तों, ये थी सुमन लता जी और उनकी बच्ची माही की कहानी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में, जिसने माही ने जिसने छोटी सी उम्र में इतने सारे बड़े काम कर दिए और एक बच्चे की जिंदगी बचाई अपना दिल दान करके। हम आशा करते हैं कि आपको अंगदान का महत्व समझ में आया होगा। जल्दी ही हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अलविदा।
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
3: दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।
4: Brought to you by TVS Credit, easy loans for all your needs.

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
3: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य
4: होने तुसी सुन रहे सी स्पॉन्सर प्रोग्राम ऑर्गन इंडिया। यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार

0: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
0: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: श्रोतो, विशेष जयमाला प्रोग्राम लई थोड़ा जो इंतजार करो। ये प्रोग्राम असी विविध भारती मुंबई तो लेकर आंगे।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी ने। तो आइए सुने हसरत जयपुरी द्वारा प्रस्तुत ये विशेष जयमाला कार्यक्रम।
1: प्यारे फौजी भाइयों और आवाज की दुनिया के दोस्तों को मेरा गीत भरा संगीत भरा नमस्कार। ये प्रोग्राम मैं राज साहब और शैलेंद्र जी की याद में कर रहा हूँ, जो अब भी मेरे सामने रहते हैं। हमारा मिलन बरसात से शुरू हुआ, लेकिन मौत देखते देखते बिछड़ाती चली गई। एक शेर फौजी भाइयों के खिदमत में है कि फूल खिलते हैं बहारों में उजड़ने के लिए, लोग मिलते हैं जमाने में बिछड़ने के लिए। तो मेरा बरसात का पहला गाना फौजी भाइयों के सामने उनकी नज़र कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे गीतकार होने की शुरुआत होती है। वो गाना है जिया बेकरार।

इसी इंतजार में शैलेंद्र जी मुझसे आन मिले और प्यार मोहब्बत के वादे होते गए, साथ रहने की कस्में खाई गईं कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन वो कहाँ, वो कहाँ, वो कहाँ। यास रहती है, आस रहती है, हर खुशी गम के पास रहती है। आप क्यों हमसे दूर रहते हैं, हर तमन्ना उदास रहती है। तो लीजिए उन्हीं का लिखा हुआ एक गीत, हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, सुनिए।

हाँ तो फौजी भाइयों, जैसे हम दो राइटर थे, इसी तरीके से दो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे हमारे साथ, वो भी शामिल थे। दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, शंकर और जयकिशन, जो हमारी गीतों को धुने देते थे, उनको पॉपुलर बनाते थे। आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। फिर हमारे राज साहब, जो जिन्होंने हमें इकट्ठा किया था, फौजी भाइयों, जिन्होंने हमें इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाया था, गुलदस्ता।

वो अपना काम करते थे, शैलेंद्र जी अपना काम करते थे, मैं अपना काम करता था। कभी ऐसा कोई वाक्य पेश नहीं आया कि मैं मुझ में और शैलेंद्र जी में कोई झगड़ा हुआ हो या कोई लड़ाई हो। वो अपना गाने लिखते थे, मैं अपना गाने लिखता था। देखिए क्या दिन थे वो भी। अब वो दिन चले गए, वापस तो कभी लौट के आने वाले नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो ज़रूर आती रहती हैं। लिहाजा इसी गाने को शैलेंद्र जी ने किस अंदाज से, दिल एक मंदिर है उसमें लिखा है, वो आप सुन लीजिए। वो गाना जो है वो दिल की तर्जुमानी करता है, याद ना जाए बीते दिनों की।

फौजी भाइयों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम कैसे काम करते थे। हम चारों सुबह जैसे किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या किसी मस्जिद में आदमी जमा होते हैं, इसी तरीके से हम इबादत के तौर पर अपने म्यूज़िक रूम में जमा होते थे। उसके बाद राज साहब आते थे, तर्जें सुनाई जाती थी, गाने सुनाए जाते थे और राज साहब बताते थे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हम स्टॉक जो है हमेशा बना के रखते थे, ये हमारा रोज़ाना का मामूल था। हम सुबह से लेकर शाम तक अपने म्यूज़िक रूम में रहते थे और काम करते रहते थे और इतने प्यार के साथ।

0: जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
3: देव दर्शन धूप।

0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी ने। तो सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग।
1: हाँ फौजी भाइयों, अब ये सुनिए कि अचानक मुझ पर गम का पहाड़ कैसे टूटा।

ये 14 दिसंबर का दिन था। उस दिन राज साहब का जन्मदिन हुआ करता था। हम बड़े शानदार तरीके से गाया करते थे, बजाया करते थे और हर रंग रंगलियां मनाया करते थे। लेकिन उसी दिन देखिए कि ऊपर वाले को क्या मंजूर हुआ कि अचानक शैलेंद्र जी की तबीयत ख़राब हो गई। उनको नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया गया और ये समझ में भी नहीं आता था कि वो हमसे बिछड़ जाएंगे। वही एक पहला साथी है जो हमें छोड़कर चला गया है। पहला साथी एक वो है जो हमें छोड़कर गया है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा कि इतना प्यार, मोहब्बत, कसमें, वादे हर किस्म से कि हम नहीं बिछड़ेंगे, नहीं बिछड़ेंगे, नहीं बिछड़ेंगे। इतना आदमी कौल व करार का पक्का, लेकिन मौत हंस रही थी और देखती थी कि ये क्या है, ये अपने दिल में क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं, अल्लाह को क्या मंजूर था। यहीं से हमारा स्टार जो है वो समझे आप गहन के अंदर आया और उनका जाना यूँ समझिए कि कयामत टूट पड़ी। जो अनाड़ी फिल्म में लिखा हुआ खुद इन्हीं का गाना क्या कह रहा है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लूट जाना।

कहते हैं मोहब्बत इसका नाम है। शैलेंद्र जी ने अपनी पिक्चर बनाई, फिल्म का नाम था तीसरी कसम, लेकिन उनका प्यार, उनकी मोहब्बत देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं अकेले गाने नहीं लिखूंगा जब तक कि हसरत मियाँ शामिल ना हों, क्योंकि हसरत मियाँ तो मेरे बाजू हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पूरे गाने लिख जाऊँ और हसरत मियाँ गाने ना लिख सकें। ये उनकी मोहब्बत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हसरत जी, एक दो गाने मुझे मेरी पिक्चर में तुम्हें लिखने हैं, मारे गए गुलफाम और दुनिया बनाने वाले। तो मैंने कहा शैलेंद्र जी, मैं लिख लूँगा ये को, अब यही तो

आपकी मोहब्बत है, तो कहने लगे नहीं, जब तुम मेरे साथी हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे गाने मैं लिख जाऊं, गाना तो तुम्हें दो लिखने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक सिचुएशन है हजरत मियाँ, इसके ऊपर तुम्हें गाना लिखना है। हम सब बैठ जाते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे लिखना है। तो राज साहब को बुलाया गया, शंकर जयकिशन थे, मैं था, शैलेंद्र जी थे, राज साहब खुद काम कर रहे थे उसमें हीरो का। तो मुझसे कहा कि भाई ऐसे है और ये गाना कल पूरा होना चाहिए, दो तीन मरतबा, ये रिपीट भी होता है टाइटल सॉन्ग की तरह से। तो मैंने कहा शैलेंद्र जी आप कहें और मैं ना लिखूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कहें तो मैं आपके लिए जान दे दूं गाना लिखने की, तो क्या बात है। उसके बाद ये मैंने गाना लिखा और उसमें यही गिला है कि ऐ ऊपर वाले, ऐ परवरदिगार, ऐ भगवान, तूने ये दुनिया बनाई है, क्यों बनाई, ये एक शिकवा है, एक शिकायत है उस ऊपर वाले से जो आसमानों में रहता है। आप ये मेरा गाना सुनिए जो मेरा लिखा हुआ गाना है, इससे पूरा फलसफा, पूरी बात दिल की आपको मालूम हो जाएगी कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।

0: जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी ने। तो सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग।
1: फौजी भाइयों, शैलेंद्र जी के जाने के बाद हमारे साथी बिछड़ने लग गए। जयकिशन जी गए, उसके बाद शंकर जी गए, और एक आखिरी सहारा था जो राज कपूर साहब का, वो भी मुछड़ गए। लेकिन मेरा दिल जो है फौजी भाइयों, रात दिन जला करता है, रात दिन जला करता है। और ये मेरा गाना आपको बता देगा, मेरे दिल की बात कह देगा। रात और दिन दिया जले, मेरे मन में फिर भी अंधियारा है।

कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती। क्या क्या हमने दिन गुजारे और क्या क्या हम सब ने मिलकर गाने किए, वो जमाना अब कहीं नजर नहीं आता है। राज साहब के साथ राजबाग में सिटिंग हो रही है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। ये सब चले गए, सब बिछड़ गए। तुझसे अच्छी तो याद कुछ तो मेरा ख्याल करती है। एक मेरा जोकर में गाना है भाई, वो गाना जो है वो पूरा गाना बता देगा कि अब वो कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, जाने कहाँ गए वो दिन।

हाँ फौजी भाइयों, जब तीनों चारों शंकर, जय किशन, शैलेंद्र साहब चले गए, राज साहब का तो अभी अभी अभी देहांत हुआ है, तो मैंने राज साहब से कहा कि वो तीनों साथी जो हैं वो चले गए। राज साहब अभी तो आप जिंदा हैं, खुदा करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, तो कम से कम मुझे तो आर के अंदर इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, 40 बरस से, तो कम से कम मुझे भी तो कोई एकाध गाना दो। जब वो बना रहे थे राम तेरी गंगा मैली है, तो मुझसे कह लगे हजरत मियाँ घबराओ मत, एक गाना तुम्हारे लिए मैंने रखा है और वो तुम ही लिख सकते हो।

0: अच्छा फौजी भाइयों, मैंने आपका बहुत वक्त लिया, माफी चाहता हूँ। मैं तो शायर आदमी हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ। आप तो माशाल्लाह देश के रक्षक हैं, लेकिन वक्त आ जाए तो फौजी भाई कलम से भी मैं वो काम ले लेता हूँ कि जो आप बंदूक से या बम से काम लेते हैं। इसके लिए एक चार मिसरे मैं जरूर सुना देता हूँ। यह कलम प्यार का संसार भी बन जाती है, यह कलम प्यार में दिलदार भी बन जाती है। जब जब भी वतन पर कोई आए दुश्मन, फिर कलम तीर भी तलवार भी बन जाती है। जय हिंद।
1: तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं कहानी पिंजर का दूसरा।

0: श्रोताओं की ज़रूरी सूचना, हमें खेद है कि हवा महल की समय प्रसारण समय पर जिज्ञासा के प्रसारण समय पर हवा महल प्रसारित हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और अभी हम आपको जिज्ञासा कार्यक्रम सुनवाते हैं।
1: आप हैं विविध भारती के संग
2: जिज्ञासा।
1: जिज्ञासा जिज्ञासा।

जानकी रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। इस कार्यक्रम में हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिंदगी। इस श्रृंखला की दो कड़ियां आप सुन चुके हैं बीते दो हफ्तों में। आज सुनिए तीसरी और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला में डॉक्टर योगिनी मोहरे से आपका ये दोस्त यूनुस खान बातचीत कर रहा है। सुनिए, हील योर लाइफ नाम का एक अभियान आप चलाते हैं। आप मन से अनयूज्ड इमोशंस को निकाल

0: ये ऐसे नहीं है, वन स्टॉप जर्नी नहीं है। चेंजेस जो आपको बाहर देखने हैं वो आपको अंदर से शुरुआत करनी, आपको अपनी सोच भी डेली बेसिस पे करना है। जैसे हम हमारे वर्कशॉप्स में भी सिखाते हैं कि मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन हमें लगता है बहुत बड़ा वर्ड है कि कैसे मुझे, आई डोंट बिलीव इन गॉड। बस 1 मिनट 2 मिनट दिन की अपने आप के साथ बैठो, थोड़ा सा ट्राई टू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ, उससे आपको जरूर आपकी चेंजेस होने की शुरुआत होगी। पॉजिटिव एफर्मेशंस, हमारे फिलोसॉफी में ना पॉजिटिव एफर्मेशंस का बहुत अहमियत है। तो अपने आप के बारे में अच्छा सोचो ना, सोच लो कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है। सोचने में क्या जाता है, आपने टेंशन लेके देख लिए, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो होता है कि किसी किसी को ओवर थिंकिंग की इतनी आदत होती है, क्योंकि वही है कि हमारा बचपन से हम देखते हैं हमारे इसमें। हम और एक चीज कहते हैं कि योर चाइल्डहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमने बचपन से देखा होता है कि मम्मी डैडी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेके घूम रहे, झगड़े हो रहे, फिर हम भी वही करते हैं। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते तो कोई तो एक पॉजिटिव एनर्जी, आज इतनी चीजें हो रही है, आज इतनी रिवर्स बह रही है, इतनी अच्छी चीजें भी हो रही है। लेकिन ये सोशल मीडिया कह लो या ओवरऑल आपको निगेटिविटी इतनी ज्यादा एम्फोसाइज की जाती है। आज हम न्यूज़पेपर भी, योगा वाले लोग हमेशा कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर सुबह तो मत पढ़ो, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर खोल लो आपको अधिकतर निगेटिव न्यूज मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: तो उससे आपका जो डे का नोट होता है ना, दैट यू सेट ऑन द निगेटिव नोट।
1: जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सिचुएशंस में स्टक्ड हो गए हैं, फंस गए हैं, कोई रास्ता उनसे निकलने का नजर नहीं आता है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस गए हैं जहां उन्हें बहुत सताया जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं एक माया जाल में हूं और यहां से नहीं निकल सकता, मेरी जिंदगी में केवल निगेटिविटी है और निराशा है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये एक अंधी सुरंग है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जैसे हम कहते हैं ना, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। हो सकता है आप बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हो सकता है आप कर्जे में पूरे डूबे हो बुरी तरह से, लेकिन अगर आप उसी पे एम्फोसाइज करोगे, देखो हर एक चीज की ना देखने के दो एंगल्स होते हैं, एक तो मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, एक तो है आज का इस महीने का तो चल रहा है, देखते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गिव अप करो, जो होगा सो जाने दो, बैंक वालों को घर पे आने दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नहीं है, अगर उसी पे आपने कॉन्सेंट्रेट किए हैं तो आप उसको इतनी ज्यादा पावर दे रहे हो ना यूनुस जी, कि कहाँ से आएंगी अच्छी चीजें, कहाँ से रास्ता आपका खुलेगा। आई एम स्टक आप जितनी बार बोलते रहोगे उतना ही वैसे ही आपकी जिंदगी चलती रहेगी। आपको सब खर्चे अपने उठाने ही हैं, यू बिंग द फैमिली मेंबर। लेकिन अगर आप पूरा टाइम यही सोचते रहोगे कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, ये नहीं हो रहा है, मैं तो पूरी तरह से फंस गया, तो कहाँ से नए रास्ते ओपन होंगे। करते रहो ना, देखो निगेटिव सोच के कुछ फायदा है?
1: एक चीज है जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है, वो ओवर थिंकिंग है। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ये जो ओवर थिंकिंग है किसी भी स्थितियों को लेकर, ये कितना बड़ा रोग बन गया है आज के जमाने में कुछ लोगों के लिए।
0: बहुत ज्यादा कैसे होता है ना यूनुस जी, हम आज में नहीं जीते, ये मोमेंट की जो मजे है ना, और बहुत मुश्किल रहता है। जैसे मैं कह रही हूँ तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं रहता है प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ बैठ के आपसे बात करो, 100% बीइंग हियर मेंटली इमोशनली, लेकिन इट्स वर्थ ट्राइंग।
1: अब मुझे ये बताइए कि हील योर लाइफ की शुरुआत कोई व्यक्ति करे अपने जीवन में, वो पॉजिटिव सोचना शुरू करे, वो अपने आप को शाबाशी देना शुरू करे, ग्रैटिट्यूड शुरू करे, मन से अनअटेंडेड इमोशंस को दूर करने की कोशिश करे, लेकिन जिंदगी बहुत पथरीली है, हर रोज कुछ एक झटका लगता है, हर रोज कुछ एक प्रॉब्लम आती है, हर रोज कोई एक नई निराशा या कोई एक नई उम्मीद सामने आती है, इसे कंटिन्यू रखना, अपने आप को लगातार पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है, कभी इंसान थकने लगता है और फिर एक गहरी निराशा सामने होती है, ऐसे में क्या किया जाए?
0: पहले तो ना हमें यूनुस जी ये बात करना ही बंद करना है कि निराशा निराश। जैसे कहते हैं कि एक कोई भी बंदे के दिमाग में इन अ डे मोर देन 60,000 थॉट्स आने के चांसेस होते हैं। अपना दिमाग देखो कितना चलता रहता है, तो उसमें तो निगेटिव आएगा ही आएगा। यू कांट

0: स्टॉप थिंकिंग, लेकिन हमें कोशिश जहां पे भी हो सकता है दिन में सिर्फ एक 15-20 सेकेंड के लिए आप अच्छा सोच लो, चांसेस बिल्कुल है, लेकिन शुरुआत तो कर लो ना। और जैसे आप अपने लिए अच्छा सोचते हो ना, ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचोगे। जैसे आप समझो, एक इमेजिन कर लो, आप एक बड़े से हॉल में अंदर आए हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपको हर एक को देख के अलग अलग वाइब्रेशंस फील होते हैं। हो सकता है एक सामने वाला बंदा बिल्कुल ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सब डाल के, लेकिन उसको देख के फिर भी एक नहीं आया, मज़ा नहीं आया ये बंदे को देख के। और एक हो सकता है कोई अच्छा सिंपल से कपड़े में आया, लेकिन उसको देख के आपको अच्छा सा महसूस होता है। तो कपड़ों की वजह से नहीं है ना, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, अंदर से आप क्या सोच रहे हो। हो सकता है वो आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानते, फिर भी वो अंदर से कुछ तो अच्छा सोच रहा है जिसकी वजह से उसके एनर्जीज आपको पास हो रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ, ही इज बेटर देन दैट द वन विद द ब्रांडेड क्लोथ्स।
1: मॉडर्न लाइफ में आप अपने प्रोफेशन में हैं, रोज मरीज देखती हैं, रोज तरह तरह की बीमारियों को देखती हैं, फिर उसके अलावा ये हील योर लाइफ वाला मामला चलता है, तो आपने तरह तरह के इतने सारे जीवन देखे हैं, आपको ये कितना इफेक्ट करता है?
0: बहुत ज्यादा, और बहुत मुझे मजा आता है ये सब बातें करने में।

0: से उसके एनर्जीज आपको पास हो रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ इज बेटर देन दैट द वन विद द ब्रांडेड क्लोथ्स।
1: मॉडर्न लाइफ में आप अपने प्रोफेशन में हैं, रोज मरीज देखती हैं, रोज तरह तरह की बीमारियों को देखती हैं, फिर उसके अलावा ये हील योर लाइफ वाला मामला चलता है, तो आपने तरह तरह के इतने सारे जीवन देखे हैं, आपको ये कितना इफेक्ट करता है?
0: बहुत ज़्यादा, और बहुत मुझे मज़ा आता है ये सब बातें करने, बिकॉज माइंड गेम ना इतना पावरफुल है ना यूनु जी, आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन वो आप फिनिक्स जैसे निकलता है बर्ड जो कहते हैं, वो आप निकल सकते हो, कितने भी बड़े कीचड़ में होने दो आप उससे बाहर आ सकते हो, और सब हो लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं सही चल रहा है ना तो आप फिर से ऐसे डाउनफॉल होने की संभावना रहती है। तो इट्स बहुत ही सुंदर फिलॉसफी है। जैसे मैं पेशेंट से बात करती हूँ ना, तो पेशेंट शुरुआत में कुछ नहीं कहते, फिर हाँ ना मेरे सास के साथ 10 साल पहले झगड़ा, 10 साल पहले का झगड़ा भी हमें याद होता है पूरा डिटेल के साथ याद होता है।
1: लेकिन ये इतना आसान नहीं है जैसे कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकाल ली
0: बिल्कुल
1: जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आप लोगों को प्रेरित करती है कि
0: हाँ
1: वो करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम हमारे जो वर्कशॉप्स में ना हम यही सिखाते हैं कि कैसे करना है, और अगर नहीं भी हो रहा है, देखो हर एक की जर्नी अलग है, दे से दैट वी ऑल आर हियर हियर टू लर्न सम लाइफ लेसन, लेकिन देखो एक ही जिंदगी है, तो ऐसे तरह से तो जी के देख लिया, थोड़ा सा चेंज कर लो नजरिया, हो सकता है आपकी लाइफ और खूबसूरत हो जाए।
1: अच्छा ये बताइए कि जिस तरह के टाइम में हम जी रहे हैं, बहुत सारी कंपटीशन है, वैल्यूज जो हैं वो एक तरह से ये कहना चाहिए कि डिके हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ईमानदारी, सच्चाई, एक सही फिलॉसफी पर चलना उतना ज़रूरी नहीं है जितना किसी भी रास्ते से कामयाबी हासिल करना, और कामयाब लोग मुस्कुराते नज़र आते हैं, और अगर आप वैल्यूज़ के ज़रिए चल रहे हैं तो आपकी यात्रा थोड़ी धीमी है, फ्रस्ट्रेशन से भरी भी हो सकती है, तो इंसान क्या करे?
0: आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको कंपटीशन में किसी और को प्रूव करना है या अपने आप के लिए एक सुंदर लाइफ क्रिएट करनी है।
1: बहुत बढ़िया।
0: जैसे हाँ बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को अगर एडमिशन चाहिए तो मुझे 1 करोड़ समझो चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट टू हैव 1 करोड़, लेकिन वो 1 करोड़ लाने के चक्कर में हो सकता है आपको बच्चे में उस कोर्स में इंटरेस्ट ही ना हो, हो सकता है वो 1 करोड़ लाने के चक्कर में आपकी रात की नींद खराब हो रही है, तो उसमें कोई भी, देर इज नो विन विन सिचुएशन। और हो सकता है आप जिस तरह से, ऑफकोर्स मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं है कि आप पैसा मत कमाओ, ये नहीं है आप कंपटीशन मत रखो अपने दिमाग में, सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कहते हुए

0: अपनाया जाता है अपने भीतर के इमोशंस को निकालने का, जिसको रिग्रेशन कहते हैं, इस बारे में आप क्या कहती हैं?
1: रिग्रेशन मतलब वही है कि अपने अंदर की जो निगेटिव इमोशंस है उसको बहुत समझना बहुत जरूरी है, वो समझोगे तो ही उसको अंदर से निकालोगे।
0: ये अपने आप हो सकता है या इसमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है?
1: नहीं, मदद ले लो किसी की, प्रोफेशनल की, तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अपने आप

0: विजुअलाइज कर रहा है मैं सीईओ बन जाऊं, विजुअलाइज कर लो ना अपने आप के लिए, नुकसान किसको है, कुछ नहीं है।
1: अच्छा ये बताएं कि आपने कहा था कि हमारे जीवन में एक चीज की कमी है और वो है कि हम एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे, परिवार के लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। इन बातों की कमी से कितनी इमोशनल सिचुएशंस पैदा हो रही हैं?
0: बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि देखो इमोशंस, अगर मुझे बात करनी है और मेरे लिए घर में कोई अवेलेबल ही नहीं है तो मैं किससे बात करूंगा भाई। जैसे आजकल हेल्पलाइंस निकल रहे हैं, जैसे सुसाइडल थॉट्स वालों के लिए भी हेल्पलाइंस है कि बात करो, तो ये बहुत मतलब इट्स अ सैड सिचुएशन ऑफ टुडेज जनरेशन, लेकिन ये है। इसीलिए हो सके अगर थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली के लिए निकाल सको, लेकिन लाइफ भी इतनी फास्ट है, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन और बाकी सब चीज़ें हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन येस, योर पॉजिटिव एफर्मेशंस ऑलवेज वर्क इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इसलिए वो कहते हैं ना कि एटलीस्ट वन मील यू हैव विद योर फैमिली माइनस स्क्रीन।
1: बिल्कुल, बिना स्क्रीन के दिन में एक बार में पूरा एक परिवार मिल बैठे, हाँ। खाना खाए, आपस में बतियाए,
0: बिल्कुल
1: वो बहुत जरूरी है। इससे भी चीजें काफी कुछ बदलती हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर मैं आपसे कहूं कि कोई तीन ऐसे फॉर्मूला दीजिए जिनके जरिए जो लोग अब शुरुआत कर रहे हैं जीवन में पॉजिटिविटी लाने की, तो वो तीन कौन सी बातें होंगी जिनको आज से अपना के हम जिंदगी में बदलाव की

0: बात कर सकते हैं।
1: एटलीस्ट दिन में एक बार शीशे के सामने खड़े होके अपना नाम लीजिए और बोलिए, जैसे मैंने अपना नाम लेना है तो योगिनी आई लव यू,
0: अरे
1: द वे यू आर,
0: ये जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: ये
1: है।
0: तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो आराम से हो सकता है।
1: दिन में एक ही बार कह लो टू बिगिन विथ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। उससे ही देखो, नहीं होगा शुरुआत में तो आप कोशिश कर लो यूनुस जी, अपने आप को शीशे में देखो, बस अपने आप को देखो। हम नहीं देखते, हम ना जो खामियां होती है उसी को देखते हैं।
0: अच्छा, शीशा हम खामियां देखने के लिए देखते
1: हैं। हाँ, देखो शीशे में देखते हैं तो जैसे मैं लेडी हूँ, मैं शायद देखूंगी कि यार मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं या जो भी है वो चीज़ें। तो अपने आप को बस देखो, हो सकता है शुरुआत में डिफिकल्ट हो, अपने नाक को देखो, कहीं पे भी देखो, बस टेल योर सेल्फ वंस, एटलीस्ट वंस इन अ डे दैट आई लव माई सेल्फ द वे आई एम।
0: मैं अमूमन लोगों को देखता हूँ कि वो आईने में देखते हैं तो पहला सेंटेंस ये निकलता है, यार बहुत मोटे हो गए। तो ये सब बदलना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है, मतलब वो बदलेगा
0: जी। ये एक फॉर्मूला हुआ, हाँ। इसके आगे के दो,
1: उसके आगे अपने आप को माफ करो, हो सकता है आपने बहुत बड़ी गलती कर ली हो, बट फॉरगिव योरसेल्फ कि कहीं पे जो भी है अपने आप को माफ करते रहो। और जैसे आप अपने आप को माफ करना सीखोगे ना, आप आजू बाजू वालों को भी माफ कर देते हो, तो वो भी बहुत, और माफ करना है दिल से, माफ करना है। यू डोंट हैव टू रियली हैव लंच विद देम, बट फॉरगिव देम एंड लेट इट गो, लेट दैट एंटायर इवेंट गो। जैसे थर्ड क्लास में आपने कौन से कपड़े डाले थे उससे आपको अभी कुछ दुख नहीं होगा, वैसे ही वो इवेंट हुआ है, हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन
0: और कई बार दिमाग पर वो बहुत गहरा छप जाता है, भयंकर, उसको निकाला कैसे जाए।
1: क्योंकि देखो, एक बार हर्ट हुआ होता है वो, एक बार समझो कुछ भी घर में मारपीट कुछ भी हुआ हो, लेकिन यू आर हर्टिंग योर सेल्फ एवरी डे बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट विच टुक प्लेस मे बी 10 years बैक। तो वो है कि दूसरी बात, अपने आप को माफ करो, वो बंदे को भी माफ करो एंड लेट इट गो। अगर वो रिलेशन वो सही नहीं है तो वो अपने आप अपने लाइफ से निकल जाएंगे, या फिर हो सकता है वो बंदे का आपकी तरफ बर्ताव चेंज हो जाए, अपना आपकी तरफ बर्ताव, खुद का जो अपना बर्ताव होता है वो चेंज होना शुरू कर।
0: कितनी बड़ी बात है ये, माफ करना। ये हो गई दो बातें, अब तीसरी बात बताइए।
1: और तीसरी बात, अपने आप के लिए अफर्मेशंस करो
0: जी,
1: पॉजिटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहो कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो ऐसे ही हो रहा है। अगर आप मोटे भी हो तो आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, आई एम इन परफेक्ट वेट, बोलो ना। नहीं बोल के आपने कोशिश करके देख ली कुछ नहीं हो रहा है, तो अच्छा सोच के देख लो, हो सकता है चेंज होने लो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये एक दिन की शुरुआत नहीं है, मतलब ये शुरुआत है लेकिन ये जिंदगी जीने का तरीका है
0: जी। तो आपने, जैसे मैंने आपसे पूछा कि तीन सूत्र जो हैं वो चलते चलते आपसे जानने चाहे थे, ताकि लोग अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करें, आईने में अपने आप को देख के अपनी तारीफ करो, अपने आप को माफ करो और अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। ये लोग करके देखें और हमें बताएं कि किस तरह से उनकी जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं। डॉक्टर योगिनी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने बताई जो जिंदगी में सकारात्मकता की शुरुआत कर सकती हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, एक लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं। इन तमाम बातों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: डॉक्टर योगिनी मोहरे से बातचीत पर आधारित श्रृंखला लव यू जिंदगी की ये तीसरी और अंतिम कड़ी थी। डॉक्टर मोहरे से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जिज्ञासा कार्यक्रम के पोस्ट के नीचे कमेंट करके। जिज्ञासा।

0: जिज्ञासा।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

0: प्रस्तुत कार्यक्रम चित्रलोक।
1: तक तड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले, सकल समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में दंग, और दर्प दंग मैं संग।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से। आवाज़ें हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, श्रेयांश स्वागत राठौर और साथियों की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म दिल्ली सिक्स से, आवाज़ कैलाश खेर और साथियों की थी। गीत के बोल प्रसून जोशी की और संगीत AR रहमान के।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है वहां से टेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था।

0: समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव

0: सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
1: I would like to say that the outcome document,
2: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
1: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
3: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय

0: अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोफ को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरेना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दिन से, आवाज़ मेघना मिश्रा की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत राम संपत का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म डंकी से। आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: सफर यूं ही सफर ये कट जाएगा।
1: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आँखों की गुस्ताखियाँ से, आवाज़ जुबिन नौटियाल की थी। गीत के बोल विशाल मिश्रा के और संगीत भी विशाल मिश्रा का ही था।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: हमारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म गदर 2 से। आवाज़ें विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल लिखे थे यंगवीर रोहताश गैक्सिनिया ने और संगीत ऋत्विक कलशिलकर शाइन और राज मावेर का था। इसी के साथ ही कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये है विविध भारती।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
6: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
5: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
6: HIV
5: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
7: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

हिंदी फिल्म संगीत के समुद्र में गोता लगाएं तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

दरअसल शंकर जयकिशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जयकिशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जयकिशन है चांद।

ये गीत संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाने लगे। आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाडीलाल जी से हुई। फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

0: का नहीं, अब किसी तो किसी पर भरोसा नहीं, अब कहाँ जाए हम।
1: रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

0: रास्ता।
1: नियति का खेल देखिए कि कुछ ही समय के बाद जय किशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीत का जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते थे।

रोचक बात ये है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहाँ से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर करें।

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

दरअसल जय किशन रूमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

जयकिशन ने प्रेम विवाह किया था। वे बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुनें बनाने के साथ साथ जयकिशन शायरी और कविता के भी बड़े शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था।

दोस्तों, ये जिक्र उन गीतों का है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने बनाई थी फिल्म दिल अपना और प्रीति पराई।

दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीतकार जय किशन एक सीधे साधे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जय किशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

सन 1971 में 39 वर्ष की छोटी आयु में संगीतकार जय किशन ने इस संसार को अलविदा कह दिया।

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्रेम दिल की वो दास्तां है जिसे शब्दों से ज्यादा खामोशियां कहती हैं। कभी किसी की एक झलक दिल में उजाला भर देती है, तो कभी उसी चेहरे के इंतजार में पूरी रात चांदनी बनकर ठहर जाती है। मोहब्बत में इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है। महफिल में महबूब के आने से बहारें भी फूल बरसाने लग जाती हैं।

मुस्कुराहट पे लगता है शायद वो आए हैं। हर हवा के झोंके में उनकी खुशबू तलाशते हैं और हर धड़कन

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

दिल की इसी अनकही कहानी में कुछ ख्वाब हैं, कुछ अरमान हैं, कुछ बीती हुई शामें हैं और एक ऐसे मिलन की आस है जो शायद इस रात की खामोशी में कहीं दूर से चली आ रही है।

अंतराल के बाद हम और आप साथ साथ कार्यक्रम चल रहा है छाया गीत। खुद पर यकीन हो चला है कि ये दिल तुमसे ही मोहब्बत करने लगा है। कोई कह दे जाके किसी से भी तो क्या फर्क पड़ता है, बाहरें तो फिर भी आएंगी। जब तुम्हारा साथ मिल गया तो मंजिलें खुद ब खुद करीब आएंगी। रंग प्यार का ऐसा छाया कि चांद को देखकर ये दिल कुछ इस तरह से शर्माया।

जिस चाहत के लिए कभी रातें लंबी लगती थीं, आज वही चाहत एक खूबसूरत सुबह बनकर जिंदगी में ठहर गई है। जहां कोई दूर था तो ख्वाब था, पास आया तो हकीकत बना, और मिलकर ऐसा लगा जैसे दिल को आखिरकार अपना हमसफर मिल गया।

कितनी अजीब है ना इश्क मोहब्बत प्रेम की गलियां। मिलन अभी हुआ नहीं मगर दिल ने उसे न जाने कितनी बार जी लिया है, जैसे कोई भटकी हुई राह अपनी मंजिल पाले, जैसे बरसों से प्यासा दिल उसके मिलने पर झूम कर संग संग गीत गुनगुना ले, जैसे किसी अधूरे गीत को अचानक उसका आखिरी सुर मिल जाए। बस लगता है वक्त यहीं थम जाए और इन मोहब्बत भरे दिलों को यूं ही धड़कने दें।

0: रात अपने पूरी शबाब पर है, हमसे कह रही है, तुम सबको सोना नहीं है क्या? चलिए छाया गीत के सफर से विदा लेते हैं और प्यार भरे नमस्कार के साथ मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशक खबरां। नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विखे आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन दे अज पहले दिन ब्रिक्स देशां ने सर्वसम्मति नाल नवी दिल्ली ऐलाननामे नूं अपना लिया। हरियाणा दे मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत वल्लों ब्रिक्स की मेज़बानी करना देश लई माण वाली गल है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रकाश पुरब दे मौके ते देशवासियों नूं वधाईयां दित्तियां। पंजाब दे राजपाल ते चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने यूनिवर्सिटियां नूं उच्च सिक्ख्या, खोज ते नवीनता नूं बदलन लई AI दी वध तों वध वरतों करन दा सद्दा दित्ता। मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विच नवीनता ते उद्यमता दे खेतर विच निरंतर प्रगति नूं वेखदे होए स्टार्टअप्स नूं उनां दे विकास दे वख-वख पड़ावां ते वित्ती सहायता प्रदान करन लई इक मजबूत वित्ती तंत्र बनाउण ते जोर दित्ता। हरियाणा लगातार तीजे साल खूनदान दे खेतर विच देश दा मोहरी राज बन गया। सूबे नूं 1 अक्तूबर नूं नवी दिल्ली विच होण वाले राष्ट्रीय स्वै इच्छत खूनदान दिवस प्रोग्राम दौरान सम्मानित कीता जाएगा। मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा दे पिंड कुताबड़ विच पहुंच के देश लई अपनी जान कुर्बान करन वाले सिपाही सुखचैन सिंह नूं फुल पेट करके श्रद्धांजलि भेंट कीती। चंडीगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने अज तनास विच एक रजिस्ट्रेशन कम जागरूकता कैंप दा आयोजन कीता ते हरियाणा विच 1 लाख तो वध आबादी वाले शहरां ते कस्बियां दे बाहर रिंग रोड अते राष्ट्रीय राजमार्ग दे निर्माण नूं प्रवानगी दित्ती गई। एसन मुख प्रदेशक खबरां।
4: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
5: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
6: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: हुन पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। सुरसांझ प्रोग्राम दे सारे सुनने वालियां नूं साडा प्यार भरिया नमस्कार। प्रोग्राम दा आगाज गिप्पी गरेवाल दे इस थिरकदे होए गीत नाल।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: प्रोग्राम विच वारी इसके दे जैज तम्मी दी आवाज, यो यो हनी सिंह दा रैप, तर्स अल्फाज दी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने

0: कि विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।